एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: कोड 165 165।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग सू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू श्यांग को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज जंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आइए सुनते हैं प्रीति शर्मा से चिंतन।
2: प्रकार वृक्ष का मूल जितना गहरा होगा, सुदृढ़ होगा, उतना ही अधिक पल्लवित, पुष्पित और फलित होगा। उसी प्रकार मानव में दया भावना जितनी ज्यादा गहरी होगी, विशाल होगी, जीवन उसका उतना ही सुखकारी होगा। दया भाव सात्विक भाव है। मानव की आंतरिक दया भावना की विशालता से उसका जीवन सुखद, मंगलमय हो सकता है। जिन जीवों में दया भावना होती है, वो ही मानव जीवन प्राप्त करता है। दया धर्म का मूल है। सभी धर्मों में दया पर जोर दिया गया है। अगर आप दया नहीं कर सकते तो मानव जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। दया रहित जीवन तो पशु पक्षी के समान है। खाया पिया, जीवन यात्रा पूरी की और भगवान के घर पहुंच गए। मानव को बच्चों के प्रति, वृद्धों के प्रति, निसहायों के प्रति दया करनी चाहिए। दया करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश्वर ही दया भावना उत्पन्न करता है। दया भावना से और भी बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे करुणा, विनम्रता, सहनशीलता। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, दधीचि ऋषि अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्हें दया भाव से पूरा संसार जानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, अर्थात यह दया भाव से ही संभव है कि सब जगह हरियाली होगी, खुशहाली होगी। गौतम ऋषि ने 8 संस्कारों को निर्देशित देते हुए बताया है, जीवन में प्रथम स्थान पर दया भाव को रखा गया है। दया सात्विक भाव है। दया का अर्थ है दुखी का दुख दूर करना की अभिलाषा ही दया है। दया बिना संसार का संचालन संभव नहीं है। दयावान अपने पराये का भेद नहीं करता है, नहीं वह हानि लाभ की सोचता है। धर्म की आत्मा दया है। प्रभु की दया मात्र से ही मानव जीवन प्राप्त होता है। माँ की दया से ही बालक बड़ा होता है और शिक्षक की दया से ही मानव पारंगत होता है। हमें सर्वप्रथम अपने प्रति दयावान होना चाहिए। दया भाव को परिवार के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। मनुष्य को दया अवश्य करनी चाहिए, परंतु जहाँ जरूरत हो वहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। दया भावना से युक्त कोई कार्य करते हैं तो वह गलत नहीं हो सकता। दया भाव से हम बड़े से बड़े अहंकारी की नफरत को भी प्यार में बदल सकते हैं। दया की अनुपस्थिति में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। दया चरित्र को सुंदर बनाती है, सद्गुणी बनाती है। दयाहीन व्यक्ति मुर्दे के समान माना जाता है। दयाहीन मानव निष्ठुर, हिंसक, कपटी होगा। जिसके मन में प्यार, अहिंसा की भावना होगी, वही दयावान होगा। मनुष्य के प्राण रहने तक मनुष्य को दया भाव को नहीं त्यागना चाहिए।
3: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। सुबह के 6:08 हुए हैं। आइए सुनते हैं वंदना। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सुमन कल्याणपुर की आवाज में है।

साहित्य, नाटक, झलकी, ज्ञान विज्ञान, खेल, स्वास्थ्य और मनोरंजन का खजाना आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं वंदना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति समूह स्वरों में देशगान।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज आप इसका 158वां भाग सुनेंगे। कलाकार
1: अभी आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन-धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कहा न पावा।

अभी आप रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में अब से थोड़ी ही देर में ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे खेती नी बात। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मांगीलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन।

प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंकज देवरा से वागड़ी गीत गायन। आठ बजकर 15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से और राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण समय होगा 8:45।

प्रातः 9:10 और 11:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत, 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 7:30, 9:30 और दोपहर 12:00 से आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। शाम 7 बजे

किसान श्रोताओं के लिए प्रसारित होगा कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम और रात्रि में 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। शाम 5:30 और रात्रि में 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इसके अलावा समय समय पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली और जयपुर केंद्र से।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: अभी हम आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत मांगीलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: अभी आप आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत मांगीलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन।

0: हरिशरणामे भाटी हरजी रे बोलिया, हरिशरणामे भाटी हरजी रे बोलिया।
1: शरणे आया रिल जा।

0: अभी आप आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत मांगीलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन में आज आप सुनेंगे पंकज देवरा से वागड़ी में गीत गायन।
1: मेरी पहली रचना है इंद्र राजा से बरसात के लिए कामना करती हुई एक किसान की बेटी।

खमाकोर मेरी तीसरी रचना है। जब सैनिक सीमा पर होता है देश की रक्षा के लिए, तब उस पत्नी को अपने पति की किस प्रकार से याद आती है, वो क्या कहती है, इस गीत में सुने। समय

अभी आप वातायन के अंतर्गत पंकज देवरा से वागड़ी में गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं राजा रानी इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में सुनिए ये अगला गीत। फिल्म का नाम मदहोश। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में बेटी फिल्म का गीत, शकील बदायूनी की रचना, सोनिक ओमी का संगीत।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के और आइए अब आपको सुनवाते हैं अप्रैल फूल इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन की धुन।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना बदले आला दिना बदली दुनिया के आया।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गुलशन बावरा ने इसे लिखा है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं आप विविध भारती से सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आप आज के फनकार में सुनेंगे फिल्मकार किशोर साहू पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले और इसी कार्यक्रम को रात्रि 9:30 पुनः सुना जा सकता है। इसी के साथ आज का हम है राही कार्यक्रम ये हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष मान्यता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टरडम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। तो तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियाद

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं

0: बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
2: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से

0: होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फेन और झांग शुशियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वह अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.ue.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना, दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिन्दुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, AI और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ख्याति गांधी का नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ होता नहीं है, बस हम किसी चीज के होने का इंतजार करते रहते हैं। घड़ी की सुइयां चलती रहती है, दिन बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और अटका हुआ होता है। कभी किसी के आने का इंतजार, कभी किसी खबर का, कभी किसी जवाब का, और कभी बस उस एक पल का जब लगे कि अब सब ठीक हो गया है। अजीब बात है ना, जो अब चीज हमारे पास है ही नहीं, उसके बारे में सोचते हुए हम अपना सारा वक्त गुजार देते हैं। दरअसल आज हम उसी एहसास की बात कर रहे हैं, वह एहसास जो कभी बेचैन करता है, कभी उम्मीद देता है, और कभी कभी हमें खुद से ही मिला देता है। वह एहसास है इंतजार का। जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पल हो जिसमें इंतजार ना छिपा हो। कभी सुबह होने का इंतजार, तो कभी किसी की एक मुस्कान का। इंसान जन्म लेते ही इंतजार करना सीख जाता है। बचपन में गर्मी की छुट्टियों का इंतजार, जवानी में सपनों के पूरे होने का, और उम्र बढ़ने के साथ सुकून के कुछ पलों का। इंतजार सिर्फ समय बिताना नहीं, बल्कि उम्मीद को जिंदा रखने का नाम है। यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने की वजह देती है, क्योंकि जिस दिन इंतजार खत्म हो जाएगा, शायद उस दिन जीवन की कई छोटी छोटी खुशियां भी खत्म हो जाएंगी।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और शायद इंतजार भी इसी सब्र की एक परीक्षा है। जब हम किसी चीज को पाने की जल्दी में नहीं बल्कि उसके सही वक्त का इंतजार करते हैं तो उसका मिलना और भी खास हो जाता है। सोचिए महीनों की मेहनत के बाद मिली सफलता कितनी अलग खुशी देती है और लंबे इंतजार के बाद आई बारिश की पहली बूंदे कितनी सुकून भरी लगती है। इंतजार हमें सिर्फ किसी नतीजे तक नहीं पहुंचाता बल्कि उस नतीजे की कीमत भी समझाता है। शायद इसीलिए देर से मिली चीजें अक्सर ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि उनके पीछे हमारा धैर्य, हमारी उम्मीद और बहुत सारा इंतजार जुड़ा होता है।

दोस्तों, कभी कभी इंतजार हमें बदल देता है। जो पल पहले बेचैन करते थे, वही हमें मजबूत बनाना शुरू कर देते हैं। इंतजार सिखाता है कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती और हर मंजिल तक पहुंचने में समय लगता है। यह हमें धैर्य, संयम और विश्वास का अर्थ समझाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम हर चीज तुरंत पा लेना चाहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर एक संदेश देर से आए तो बेचैनी होने लगती है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन की गहराई उसी में है जहां थोड़ा ठहराव हो, थोड़ा धैर्य हो और थोड़ा इंतजार हो। क्योंकि इंतजार हमें एहसास कराता है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी खुशी उतनी गहरी नहीं होती जितनी उस चीज की जिसके लिए हमने समय और उम्मीद दोनों लगाए हों।

दोस्तों, हर इंतजार इतना आसान नहीं होता। कभी कभी हम मेहनत करते हैं और परिणाम का इंतजार करते हैं। बीज बोने वाला किसान बारिश का इंतजार करता है, विद्यार्थी अपने परिणाम का और कलाकार अपने काम को सराहे जाने का। इन पलों में धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। पेड़ एक दिन में फल नहीं देते और सपने एक रात में पूरे नहीं होते। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, वे समय की अहमियत भी समझते हैं। यह इंतजार केवल घड़ी की सुइयों का नहीं, बल्कि भावनाओं का होता है। इसमें बेचैनी भी होती है, अपनापन भी और एक मीठी सी उम्मीद भी। शायद यही वजह है कि किसी चीज के मिलने की खुशी तब और बढ़ जाती है जब उसके पीछे इंतजार के पल जुड़े होते हैं।

दोस्तों इंतजार और धैर्य शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि धैर्य के बिना इंतजार करना मुश्किल है और इंतजार के बिना धैर्य की असली परीक्षा कहां होती है। जब हम किसी चीज के लिए इंतजार करते हैं तो हर बीतता हुआ पल हमें यही सिखाता है कि हर चीज अपने तय समय पर होती है। कई बार मन परिस्थितियां बदलने की इच्छा करता है, लेकिन परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, वहां सिर्फ धैर्य काम आता है। और यही धैर्य हमें बेचैनी के बीच भी ठहरना सिखाता है, उम्मीद बनाए रखना सिखाता है। इंतजार सिर्फ किसी के आने या किसी घटना के होने का नाम नहीं है, यह विश्वास का दूसरा नाम है। यह वो पुल है जो आज को आने वाले कल से जोड़ता है, और शायद इसीलिए जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का इंतजार भी होता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए ख्याति गांधी को कार्यक्रम कुछ दिल से यहीं समाप्त करने की। आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा और साथियों के गाए राजस्थानी गीत।

0: यस, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में?
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत सीमा मिश्रा और साथियों के गाए राजस्थानी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कारोबारियों पर 30 नवंबर तक 400 टन भंडारण सीमा तय की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और राज्य में पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करने वाली 2000 से अधिक वस्त्र इकाइयां पिछले एक महीने में सील की गईं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। कल नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम वर्ल्ड्स लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए

0: ने कहा कि भारत अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के जरिए उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
1: हर देश का भविष्य उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है। G20 की अध्यक्षता में इसलिए ही भारत का मंत्र रहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
0: केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमत बढ़ने के कारण इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 30 नवंबर तक लागू रहेगी। सरकार ने चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी है। इससे त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। राज्य में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड के बेहतर उपयोग के लिए खनन प्रभावित क्षेत्रों की पंचवर्षीय योजना तैयार की जाएगी। इससे खनन क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में फाउंडेशन की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफटी फंड के गुणवत्तापूर्ण और बेहतर उपयोग के लिए जिला कलेक्टरों को फंड की निगरानी करने को कहा। बैठक में खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि डीएमएफटी में मेजर मिनरल लीजों से रॉयल्टी की 30% और माइनर मिनरल लीजों से रॉयल्टी की 10% राशि इकट्ठा होती है। इस फंड से खनन प्रभावित क्षेत्रवासियों को पेयजल शिक्षा स्वास्थ्य कौशल विकास पर्यावरण विकास सहित प्राथमिकता क्षेत्र में काम करवाए जाते हैं। साथ ही 30% राशि से सड़क आधारभूत संरचना के काम कराने का प्रावधान है। डीएमएफटी फंड में सालाना औसतन 1,600 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है। जैसलमेर में कल 77वां जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। सीमा सुरक्षा बल के साउथ सेक्टर परिसर में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये आयोजन हुआ। इस दौरान देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए भारत के नक्शे की आकृति में पौधरोपण किया गया। तिरंगे के तीनों रंगों को दर्शाने के लिए जापान की मियावाकी पद्धति से देशी प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल और बीएसएफ के डीआईजी महेश कुमार नेगी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि हरियालो राजस्थान अभियान में जैसलमेर ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है।
2: वन महोत्सव हरियाली राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम रखा, उसमें जिला प्रशासन के साथ में वन विभाग बीएसएफ और जन सहयोग के सानिध्य में आज का प्रोग्राम रखा गया और काफी उत्साह में दिखे सभी लोग और बहुत अच्छा पिछले वर्ष भी प्लांटेशन हुआ है जिले में और इस वर्ष भी हरियाणा राजस्थान में हम लोग काफी बेहतरीन कर रहे हैं। प्रदेश में अभी जैसलमेर का हरियाणा राजस्थान जैसी किसी अभियान में चौथी रैंक आती है तो मुझे लगता है कि हम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की कल जयपुर में बैठक आयोजित की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों पर चर्चा हुई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन कार्यक्रम मतदाता सूची नामांकन मतदान व्यवस्था आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। बैठक में राजनीतिक दलों से चुनाव

0: चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुझाव प्राप्त किए गए, सभी दलों और अभ्यर्थियों से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और विधिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई। प्रदेश में पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करने वाली 2000 से अधिक वस्त्र इकाइयां पिछले एक महीने में सील की गई हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई वस्त्र उद्योग क्लस्टरों के पर्यावरण मानकों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। इनमें बालोतरा, जसोल, पाली, सांगानेर और जोधपुर के वस्त्र उद्योग शामिल हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए रिवो बेल्ट पुनरुद्धार, गाद हटाने, जल निकासी व्यवस्था सुधारने की कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा हुई। प्रदेश में नशा तस्करी और अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। हनुमानगढ़ में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक तस्कर का करीब 125 करोड़ रुपए कीमत का मकान एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। उधर ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत 12 में अपराध से अर्जित करीब 3 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कार्रवाई के दायरे में लाई गई है। इनमें 7 ट्रैक्टर, 11 मोटरसाइकिल, 16 कार, 6 पक्के मकान, कृषि भूमि और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित 10 शहरों में हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 29 मिलीमीटर पानी धौलपुर में बरसा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, इसके असर से हल्की बरसात हो सकती है।
1: वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगले 3-4 दिन भरतपुर, जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, वहीं उदयपुर और अजमेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इन क्षेत्रों में अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी।
0: जयपुर में कल रविवार को भी डाकघरों में राखी भेजने के लिए विशेष काउंटर खुले रहेंगे। ये सुविधा जयपुर नगर मंडल के सभी डाकघरों में उपलब्ध रहेगी। डाक विभाग ने बताया कि जिन लोगों को सामान्य कार्य दिवसों में समय नहीं मिल पाता, वे रविवार को भी अपने नजदीकी डाकघर में राखी भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कारोबारियों पर 30 नवंबर तक 400 टन भंडारण सीमा तय की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। और राज्य में पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करने वाली 2000 से अधिक वस्त्र इकाइयां पिछले एक महीने में सील की गईं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन और अलका याग्निक की गाई गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही

0: का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत हरिहरन और अलका याग्निक के गाए गैर फिल्मी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत हरिहरन और अलका याग्निक के गाए गैर फिल्मी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: नमस्कार।
1: तुम काला बाजार किसके लिए करते थे? रघुवीर के लिए।
2: रघुवीर के लिए?
1: जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता। योर वर्शिप, आज तक जो कानून को दगा देता रहा अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी।
0: ये आवाज फिल्म काला बाजार में उस मशहूर अदाकार की है जिसे दुनिया जानती है किशोर साहू के नाम से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर।

गुजरे दौर के सिनेमा के चहेते दर्शकों के लिए किशोर साहू एक सुपरिचित नाम है। बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार किशोर साहू ने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1915 में तब के मध्य भारत और आज के छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग शहर में जन्म हुआ था किशोर साहू।

हुका नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। किशोर साहू के पिता रायगढ़ रियासत के दीवान थे। कॉलेज के दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखा करते थे। अपने कहानी लेखन से ही वो सिने जगत के संपर्क में आए। तब के बंबई में उन्हें सिने जगत में पांव जमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। मुंबई में अशोक कुमार और देविका रानी के प्रयासों से किशोर साहू को बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन प्रभात में काम करने का मौका मिला। किशोर साहू ने कुछ अरसा मुंबई में और बिताया और फिर परिस्थितियों के चलते वापस नागपुर लौट गए। नागपुर में किशोर साहू के मित्र थे द्वारकादास डागा। उन्हीं के सहयोग से किशोर साहू ने बाद में मुंबई वापस लौटकर अपनी फिल्म निर्माण संस्था की नींव रखी। इस संस्था का नाम था द इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। अपने इस बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बहुरानी। अपने फिल्म बैनर तले किशोर साहू ने जो कुछ और मशहूर फिल्में निर्मित की उनके नाम हैं पूनम की रात, पुष्पांजलि, मयूर पंख और बेटी नैना साहू को लेकर बनाई गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां।

किशोर साहू अभिनेता, निर्माता, निर्देशक बनने से पहले लेखक थे। कहानी लेखन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी ये प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आती है। एक लेखक के रूप में उनकी चर्चित फिल्में हैं मयूर पंख, दिल अपना और प्रीत पराई, हरे कांच की चूड़ियां, औरत और तीन बहुरानिया। इस फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार, उसके आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। दिल अपना और प्रीत पराई का लेखन करने के साथ साथ किशोर साहू ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: अपना।
1: निर्देशक के रूप में किशोर साहू की अन्य मशहूर फिल्में हैं 1942 की कुंवारा बाप, राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, साजन, 1948 की नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, मयूर पंख, हैमलेट, किस्म का खेल, बड़े सरकार, गृहस्थी, घर बसा के देखो, हरे कांच की चूड़ियां, पुष्पांजलि, धुएं की लकीर और पूनम की रात।

फिल्म निर्देशक महेश कौल और साहित्यकार अमृतलाल नागर किशोर साहू के अभिन्न मित्रों में से थे। नागर जी ने किशोर साहू के लिए 3 फिल्में लिखी थीं, राजा, वीर कुणाल और कुंवारा बाप। फिल्म वीर कुणाल की नायिका थीं अभिनेत्री तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ। सन 1942 में बनी फिल्म कुंवारा बाप और सन 1943 में बनी फिल्म राजा हास्य प्रधान फिल्में थीं। इनमें स्वयं अमृतलाल नागर जी ने भी अभिनय किया था। किशोर साहू एक समर्थ अभिनेता थे। यूं तो उनके अभिनय से सजी कई फिल्में हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली उनमें से ही एक है फिल्म गाइड में किशोर साहू द्वारा निभाई गई रोजी बनी वहीदा रहमान के पति मार्को की भूमिका। ये गीत है फिल्म काली घटा का।

22 अगस्त सन 1986 को इस दुनिया में अपने जीवन रूपी रंगमंच की आखिरी भूमिका निभाकर किशोर साहू इस दुनिया से विदा हो गए। हमारे पास अब उनके अभिनय से सजीव फिल्में हैं और उनके परिजनों इष्ट मित्रों के पास हैं उनकी स्मृतियां।

0: आज के ये फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब एक।
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रख

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: दोस्तों नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
2: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हो, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थीं। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे, पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के चार घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के एक माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले, हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

0: है भगवान।
1: मैं मरता जा मित्रा,
0: सजता करता जा मित्रा,
1: किसी से झुकाता चल मित्रा,
0: जग पर चाहता।

कहाँ तक पहुँची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी, ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है। बाढ़, ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था, धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिएं। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं। उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा, कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन दो तीन महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़, चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे? 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हरेक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते।

यार ये बढ़िया है। नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है। ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहाँ रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को

सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूँ, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ, ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाए क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें। थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है, मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी क्यों? हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाए, गाड़ी घेर ले, वो बात अलग है। जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई। क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था। टेबल लैंप जल रही थी। साइड की रैक में किताबें रखी थी। चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं, दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाची से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं। ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था। दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा आप कोई बात छुपा तो

नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर? अरे नहीं नहीं मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? पर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहाँ 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहाँ केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के।

ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं, देखेंगे बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूँ कि वहाँ खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो, बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एक टक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

0: चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक उठी। मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ बेटा, अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं, तुम वहां की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो, मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी, भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है, सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना? चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो, मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसा।

0: कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सबसे मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

कलियों के देश में वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेकी।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। विविध भारती पर हर शाम 4 बजे सजता है पिटारा। सोमवार को सेहतनामा, मंगलवार को सेल्यूलॉइड के सितारे, और गुरुवार को होता है हेलो फरमाइश। बुधवार को आज के मेहमान, शुक्रवार को गीतों भरी कहानी, शनिवार बॉम्बे टॉकीज।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: और रविवार
2: उजाले उनकी यादों की।
0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: कुछ दिल ने कहा,
0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
4: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
4: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
3: ना, बोलो, बोलो।
2: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
5: अभी आप विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई गजलें।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में?
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत चंदन दास की गायी गजलें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत चंदन दास की गायी गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, FM 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं टैक्सी नंबर 9211 से ये गीत KK और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीत के बोल हैं विशाल दुकलानी के और संगीत है विशाल शेखर का।

अभी आप बादशाह फिल्म का गीत सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और संगीत था अनु मलिक का। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत, फिल्म गुनाह से। अनु मलिक की बनाई धुन पर गीत को आवाज दी है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। गीत के बोल हैं समीर के।

गुनाह फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स से। गीत के बोल हैं मायापुरी के और संगीत प्रीतम का।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का आखिरी गीत फिल्म रॉक ऑन से। आवाजें हैं फरहान अख्तर और डोमिनिक की। गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: रॉक ऑन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगे। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्य

0: कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में दो कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टर्डम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए यादों की महफिल।

0: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे।

मोमिन सुल्ताना की आवाज थी। कुदरत फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था। संगीत आर डी बर्मन का, विविध भारती पर चल रही है यादों की महफिल।

0: का डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत येसुदास और हेमंत।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पर शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और इस फेसबुक पेज पर जो इबारत होती है उसके जरिए हमारे श्रोताओं को एक चैलेंज मिलता है। वो चैलेंज ये होता है कि कुछ गाने छिपे होते हैं इस इबारत में, जिसके जरिए आपको पहचानना पड़ता है कि आज के कार्यक्रम का ताना बाना आखिर क्या है। तो चलिए आज की इबारत हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। दो लोगों की बातचीत है ये, चलो गानों में बात करते हैं। मतलब, अरे मैं एक लाइन बोलूंगा जो किसी गाने की होगी, फिर तुम बोलना, लाइन बीच की भी हो सकती है। ठीक है, देखो मुश्किल लाइनें होंगी, चैलेंज मंजूर, शुरू करो। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं। नारी दीवानी हूं पीड़ा की रानी, मेरे ख्वाबों की झरोखों को सजाने वाली। किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। नए फूल फिर डगर में खिलेंगे, बहते चले हम मस्ती के धारों में। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इसका कोई पेंच भी ढीला है। हम न बोलेंगे कभी जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझो, आया ना मजा, तुम्हें तो बड़े गाने याद हैं। अगली बार फिर खेलेंगे ये खेल। ये है आज की इबारत, और बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं, और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं इस गाने के साथ। और आप भी बताइए कि क्या गानों के जरिए आप भी करते हैं संवाद। ये भी बताइए कि इस गाने को किस शायर ने लिखा है।

एक श्रोताई लिखती हैं कि यूनुसी ये संवाद वाली इबारत तो जैसे अब आपकी पहचान हो गई है, हम भी कभी कभी करते हैं गीतों के माध्यम से बातें और बड़ा ही मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई आपसे किसी सारगर्भित गद्यांश की उम्मीद रहती है और गानों की आधी अधूरी पंक्तियां जोड़कर आप इबारत न दिया करें। तो भाई हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पिछले कुछ हफ्तों से जब भी सुरीला सफर कार्यक्रम में आपका ये दोस्त आता है, दो लोगों की बातचीत को गानों में पिरोता है और उसके जरिए एक इबारत तैयार होती है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है तो बाकायदा गद्यांश लिखा जा सकता है जिसमें कोई शब्द होंगे और उन शब्दों पर गाने होंगे, पर जिस तरह से आज बहुत ही मुश्किल पंक्तियों को मैंने पिरो दिया है गानों में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें गाने खोजने में बहुत मजा आया और बहुत देर लगी गाने खोजने में? कई ऐसे लोग हैं मैंने देखा कि जिनके गानों को लेकर जवाब बड़े गलत आए हैं। मतलब ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पंक्तियों को थोड़ा सा गलत पहचान लिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा बहुत अच्छे से पहचाना। कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना था, कुछ होता है जिन्होंने से बोला है गाना है गुलजार साहब का, जो कि नहीं है। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और ये जो गाना है ये किसी के आने से चेहरे पर चमक जाने वाली खुशी का गाना है। इस वीकेंड आपके घर कौन आ रहा है, क्या आपका चेहरा खिल उठे? आपको अपने घर किसके आने का इंतजार है?

क्या बात है। अभी अभी एक कमेंट ही आया है कि वक्त के इस गाने से चेहरे पर खुशी छा जाती है क्योंकि इस गाने में बजा पियानो इनॉक डैनियल साहब का बजाया हुआ है। इत्तेफाक की बात यह है कि बीते दिनों जब मैं पुणे गया तो इनॉक डैनियल साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी। बहरहाल एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि इस गाने में साधना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो लिख रही है कि अभी तो राखी आ रही है और अपनी बेटी का इंतजार है, वो अपनी नन्ही परी के साथ आने वाली है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि राखी है इसलिए मैं अपनी बहनों और बेटी का इंतजार कर रहा हूं। एक श्रोता को जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का इंतजार है तो इसके अलावा एक और श्रोता है जिनके ससुराल वाले आ रहे हैं और वो त्रिकोणीय फल बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो आज कहीं जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनके घर कुछ लोग आ रहे हैं और उन्हें उनके आने से खुशी है। एक श्रोता है जिन्हें कुछ पत्रिकाओं की ऑनलाइन उन्होंने उनके ऑर्डर दिए थे तो उनका इंतजार है, यानी आंखों में चमक तब आएगी जब वो मैगजीन्स आ जाएंगी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रही है कि मैं आलसी होना चाहती थी लेकिन आज कोशिश किया और पहली हल कर ली। आज की इबारत कठिन है, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। कठिन आज की इबारत बाकायदा है और बहुत ज्यादा कठिन बनाई गई है। चलिए कठिनाई से आगे बढ़ते हैं और दूसरी कठिनाई की तरफ बढ़ते हैं। एक कठिनाई से दूसरी कठिनाई की तरफ। आप में से जो लोग ईमानदारी से बताना चाहते हैं बताएं कि आज कौन है जो उनसे रूठा हुआ है। पढ़ने जैसे संदेश होंगे तो हम यहां पढ़कर बताएंगे, क्या पता ये संदेश सुनकर रूठा हुआ कोई मान जाए। दूसरी चीज, रूठे हुए को मनाने का आपका फेवरेट तरीका क्या है।

भाई कितना मजा आया ये पढ़ के कि एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे साथ रूठने वाली तो हमारी नवासी है, एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम में मान जाती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रही है कि काश मैं इधर बात कर सकती लेकिन अपनी सहेली के साथ अस्पताल में हूं, मतलब किसी मरीज को देखने के लिए गई हुई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कान पकड़ो और कुछ अपनी शक्ल ऐसी बनाओ कि सामने वाले को लगे कि मस्का मारा जा रहा है। भाई बड़े अनुभवी हैं आप, बड़ी स्टाइल से आपने बताया है, एकदम तस्वीर आंखों के आगे खींच गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि मेरी श्रीमती जब मुझसे रूठ जाती है तब मैं उन्हें अदरक इलायची वाली चाय बनाकर खुद अपने हाथों से पिलाता हूं। देखिए भाई सीखिए कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने रूठे मनाने के कुछ नुस्खे लिखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा भी होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर आप में से किसी श्रोता को रूठने मनाने वाले जो नुस्खे हैं अभी भी पता है और उसमें से कुछ नुस्खे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है तो जरा लिख दीजिए, हम जरूर शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई मुझसे रूठे ना और अगर गलती से कोई रूठ लेता है तो मैं माफी मांग लेता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है, इन्होंने बड़ा शॉर्टकट मारा है, लिखते हैं कि अब तो बहुत ईजी है, रूठने वाले को मनाने के लिए व्हाट्सअप ऑन करो, फ्लावर्स केक और सॉरी सेंड कर दो। भाई अगर इतने आसानी से लोग मान जाएं तो फिर बात ही क्या है, व्हाट्सएप पर नकली फ्लावर्स, नकली केक, नकली सॉरी, क्या इससे कोई मानता है। चलिए अब यह है कि एक श्रोता जो है उन्हें शायरी सूझी, उन्होंने लिखा, रूठना तुम्हारा भी अजीब मौसम है, तुम चुप हो तो कमरे में रखी चीजें भी जैसे धीरे धीरे बोलने लगती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि रूठते तो हम भी हैं पर एक बात हमें हमारी अच्छी लगती है कि हम मान भी जाते हैं, ज्यादा देर तक हम रूठे नहीं रह सकते, ये भी एक मजेदार चीज है। तो आज के इस कार्यक्रम का रास्ता जो है वो रूठने मनाने की तरफ मुड़ गया है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक उम्र के बाद कोई किसी को मनाता नहीं है, ये भी अनुभव की बात है। फिर एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारी रूठने की उम्र पार हो चुकी है, अब तो सिर्फ समझौते में गुजर रही है। और इसके अलावा कई श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत कठिन है लेकिन इस इबारत में जो बातचीत का अंदाज है वो पसंद आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अब चलते हैं भीगने की तरफ। इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप, ये जरूर बताइएगा कि इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम रेनकोट या छतरी लेकर नहीं निकले तब जरूर ऊपर वाला टॉर्च लगा के देख लेता है और आपके ऊपर बारिश करवा देता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि मौका देखकर बारिश ने आपके ऊपर लगाया हो चौका?

0: भागी से सोती रातों में जागी से मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: भाई हमने चाहा था कि आप में से बहुत सारे लोग भीगने के अपने किस्से बताएं तो बड़ा मजा आए। एक श्रोता है लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन में तो पिछले 7 दिनों में खूब बारिश हुई और काम ही ऐसा है कि बाइक में चाहे रेनकोट भी पहनना पड़ता है तब भी सारा बदन पानी से तर हो जाता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगना भी बड़ा मजेदार अनुभव है। पहली बूंद चेहरे पर पड़ती है तो लगता है आसमान ने चुपके से छेड़ दिया हो। फिर बाल कपड़े जूते सब अपनी अपनी शिकायत लेकर बैठ जाते हैं लेकिन मन है कि बचपन की तरफ लौटना चाहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि मुझे भीगना पसंद नहीं है लेकिन मुझे भीगने वाले गीत पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि जैसे ही घर से निकले तो बारिश ने भिगो दिया, जब तक गाड़ी तक पहुंचे तब तक भीग चुके थे। इसके अलावा एक और श्रोता है अचानक बारिश में भीगने का ज्यादा अनुभव तो नहीं पर बारिश के मौसम में धूप खिली हो और छत पर कपड़े सुखाने डालें तो बादल जैसे भागे दौड़े चले आते हैं।

और हम कितना भी भाग कर जाएं, सूखे हुए कपड़ों को गीले होने से बचा नहीं पाते। ये मजेदार बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात में खेतों की मेड़ों पर भीगते भीगते मजा आता है। बहरहाल खेतों पर छाता लेकर श्रीमती जी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूं तो बात ही क्या है। एक और श्रोता है लिखते हैं कि कहीं बाइक चलाता हूं तो भीग जाता हूं अक्सर। एक और श्रोता है लिखते हैं कि धर्मशाला ओवरब्रिज में ड्यूटी जाते समय अचानक बारिश होने लगी और मैं भीग गया। घर वापस गया, कपड़े बदले, रेनकोट पहना और उसके बाद वापस काम पर गया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है भात लावणी यानी चावल की रोपाई देखने नसरापुर गए थे, तब बारिश में बहुत ज्यादा भीगे थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अगर मेरी वाइफ रूठ जाती है तो मैं सॉरी कहता हूं और जादू की झप्पी देता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है आजकल, तो इसलिए भीगने से हम बचते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में तो इतनी बारिश ही नहीं हुई कि हम भीग जाएं। और इसके अलावा इतनी सारी बातें लोगों ने बारिश के बारे में की है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे यहां सीजन की बारिश कम होती है लेकिन जब बारिश होती है तो हम अपने टेरिस पर चले जाते हैं और भीगते हैं। बारिश की इतनी सारी बातें, कोई तो ऐसा होगा जो इस वक्त कार्यक्रम सुनते हुए भी बारिश का मजा ले रहा होगा, भीग रहा होगा। ये सच है कि वायरल फीवर का डर रहता है लेकिन ये भी होता है कि बारिश हुई और लोग निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। आपके शहर के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहां बारिश में मनाया जा सकता है पिकनिक, जहां लोगों की भीड़ आती है बारिश के मजे लेने के लिए।

भाई इतनी जल्दी गाना खत्म हो गया। जो अच्छे गाने होते हैं उनके खत्म होने पर यही लगता है अरे ये गाना खत्म हो गया। एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारा सबसे नजदीकी शहर अयोध्या है जहां राम की पौड़ी पर बारह महीने नहाते भीगते पिकनिक का मजा लीजिए, पुण्य कमाइए। एक और श्रोता है जो अपने जलंधर शहर के आसपास के घूमने के इलाकों के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहां तो नर्मदा जी काफी ऊपर तक आ चुकी हैं और शासन ने मना किया, उसके बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि बनारस में बारिश के समय तीन जगहों पर सब लोग पिकनिक करते हैं, सबसे पहले सारनाथ, फिर नमो घाट और फिर बनारस का अस्सी। फिर क्या मजा है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आप भोपाल आ जाइए, कोलार डैम चलते हैं, जंगल में चलते हैं, पिकनिक मनाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बीते तीन महीनों से हम पुणे में हैं, लोनावाला, तमहिनी घाट, अनेकों झरने और इस बार तो इंद्रदेव पूना पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। और जहां तक बारिश में भीगने की बात है तो हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है शकील आजमी, वो कहते हैं खुद को इतना मत बचाया कर, खुद को इतना मत बचाया कर, बारिशें आए तो भीग जाया कर। क्या समझे आप। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि बारिश में भीगना तो होता है पर कभी कभी आंसू भी भिगो देते हैं, जज्बाती बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता लंदन में है जो बारिश का इंतजार कर रही हैं और कहती हैं कि इतनी गर्मी कि बगीचे की घास तक सूख गई है। एक और श्रोता है जो इंदौर में है, लिखती हैं कि मांडू बहुत आसपास है और वहां लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि मैं और मेरे पतिदेव जब भोपाल में मिलते थे तो बड़े तालाब के किनारे हाथों में गर्मा गर्म भुट्टा और फिर भीगने का मजा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे शहर के आसपास कारहांडला का जंगल है और ताडोबा है, पिकनिक बनाने के लिए बड़ी सुंदर जगह है। तो इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि किस तरह से उन्हें भीगने में मजा आता है और कैसे उनके घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है जहां बारिश के दिनों में मनाया जा सकता है पिकनिक। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो सागर शहर में पिकनिक बनाने की जगहों के बारे में लिख रही हैं। एक श्रोता है जो गोरखपुर में है और लिखते हैं कि रामगढ़ ताल गोरखपुर में बारिश में घूमने का बहुत ज्यादा मजा आता है, बिल्कुल अब तो वहां जो चलने के लिए जगह बन गई है वो भी बड़ी सुंदर है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं जयपुर में आमेर, जलमहल, नाहरगढ़, जयगढ़, क्या बात है। तो भैया सारे देश की जो बारिश की शानदार जगह है उनके बारे में हमें पता चल गया कि कहां कहां कैसे कैसे पिकनिक मनाया जा सकता है। खंडवा के पास हनुमंतिया टापू है, बैक वाटर का बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट, वहां भी बहुत मजा आता है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि 5 और 6 जुलाई को बहुत बारिश हुई और हम लोग मारवे बीच चले गए, बिल्डिंग की पूरी टोली गई थी पर भीगने नहीं दिया गया क्योंकि रेड अलर्ट लगा था। बिल्कुल समुन्दर जब चढ़ा हुआ हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, बारिश में दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। चलिए आज सुबह से आपके होठों पर कौन सा गाना तैर रहा है, क्या ये गाना इस गाने की गीतकार कौन है ये आपको है बताना। और हाँ ये भी बताइए कि आपने सबसे अभी कौन सी फिल्म देखी, नई या पुरानी, एकदम अभी।

भाई बड़ी मजेदार बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अलग अलग फिल्में देखी हैं, और ये जो सवाल है ना कि अभी आपकी देखी हुई ताजा फिल्म कौन सी है। ताजा फिल्म का मतलब ये है कि व्हाट फिल्म हैव यू सीन वेरी रिसेंटली, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो कितनी मजेदार फिल्मों का इंद्रधनुष सज गया। बिल्कुल ताजा ताजा रिलीज हुई फिल्मों में से भी कुछ देखी है। अब जैसे एक श्रोता है जिन्होंने अपना देश देखी है, एक और श्रोता है जिन्होंने पुरानी वाली खामोशी देखी है, यानी वो खामोशी जिसमें गाना है हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू या तुम पुकार लो। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने दोस्ती देखी है, वाह वाह वाह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत वाली दोस्ती। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बटवारा 2 देखी है और आवरापन 2 या 3 जो भी है वो देखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने टैक्सी नंबर 9211 उनकी देखी हुई आखिरी फिल्म है। एक श्रोता है जिन्होंने परख फिल्म देखी और उनके होंठों पर सजा हुआ है गाना मिला है किसी का झुमका, वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है। इसके अलावा आज का अर्जुन फिल्म कोई श्रोता है जो देख रही थी और लाइट चली गई। और इसके अलावा दीवाना मस्ताना कोई देख रहा है, कोई देख रहा है हम साथ साथ हैं, दो आंखें बारा हाथ, साहब बीवी और गुलाम, और इसके अलावा मैं वापस आऊंगा, और इसके अलावा देखिए मेरे महबूब, ओहो हो हो, नमकीन गुलजार साहब की फिल्में भी कितने सारे लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा भागम भाग, जंगल और कुदरत। देखिए सिर्फ नाम अगर पढ़े तो कितने सारे लोग क्या क्या फिल्में देख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक बार लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, सोचा था रास्ते में बारिश होगी, गाने बजेंगे, मौसम रोमांटिक होगा, बारिश हुई, गाने बजे पर रोमांस की जगह पेट ने आवाज लगाई, पहले कुछ खाने का इंतजाम करो फिर आगे बढ़ना, आखिरकार मंजिल से पहले एक ढाबा मिल गया तो समझ में आया कि कुछ सफर पेट के रास्ते

0: तय किए जाते हैं। मजाक की बात लेकिन दिलचस्प। और इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अलग अलग तरह की फिल्में देख रहे हैं, जैसे एक श्रोता है जिन्होंने स्पाइडरमैन देखी है, उसके अलावा देखिए कितनी फिल्में भाई, आराधना कोई देख रहा है, कोई गाइड देख रहा है। गाइड से एक चीज याद आ गई, आज गाइड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति का जन्मदिन है, मार्को की भूमिका निभाई थी, उनकी याद का दिन आज है। कौन है वो कलाकार ये बताइएगा। योगेश के बोल आ रहे हैं अब, जाहिर है कि सवाल ये तो नहीं होगा, इस गाने के संगीतकार बताइए।
1: कहां तक ये मन

इस गाने के जरिए योगेश जी बहुत बहुत बहुत याद आया, आपके इस दोस्त को उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला है और एक बेमिसाल इंसान, सादा लेकिन कितने गहरे गीतकार, कभी उनके बारे में बातें की जाएंगी। एक श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि गाइड के मार्को यानी किशोर साहू जी, उनकी याद का दिन है। जी हाँ, किशोर साहू उनकी याद का दिन आज 22 अगस्त 1980 को उनका निधन हुआ था। और किशोर साहू मध्य प्रदेश के राजनांदगांव के रहने वाले थे और वहां से मुंबई आए और एक्टिंग की दुनिया में तो नाम कमाया, लेकिन वो एक निर्देशक भी थे और फिल्म लेखक भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कुछ फिल्में लिखी और इसके अलावा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। क्या आपको पता है कि किशोर साहू की निर्देशित मशहूर फिल्में कौन सी हैं? एक फिल्म

मैं बताता हूं, बाकी आप बताइएगा। हरे कांच की चूड़ियां किशोर साहू के निर्देशन वाली फिल्म थी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मायूसी में गाने सुबह पर आते हैं, बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी, किसका रास्ता देखें, जिंदगी देने वाले सुन। एक श्रोता है जो कहते हैं अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। और इसके अलावा कहानियां सुनाती है पवन नाती जाती, ये एक श्रोता को बहुत ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो जैसे गानों का रिवीजन हो रहा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इंदौर में एक पुराना सिनेमा घर है मिल्की वे, जिसकी छत पतरे की थी और बारिश आने पर अलग ही पार्श्व संगीत बजता था। अब मुझे तो जावेद साहब के बोल याद आ गए, बजता है जल तरंग टीम की छत पे यूं। शायद इसी तरह के किसी एहसास के लिए उन्होंने लिखा होगा, बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि किशोर कुमार की मखमली आवाज, योगेश की दार्शनिक बोल, राजेश रोशन का ये संगीत, ये गाना अपने आप में अनमोल है। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे श्रोता अभी भी किशोर साहू को याद कर रहे हैं, मार्को जिनकी याद का दिन आज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अनमोल गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत नाजुक से एहसास को बयां करता है। सवाल ये है कि इस गाने को किसने लिखा।

एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शायद ये गीत का मालूम रूही ने लिखा है, जो गलत जवाब है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई ये गाना जो है ये कैफ भोपाली का लिखा गाना है और ये सही जवाब है। कैफ भोपाली एक बहुत ही नामी शायर, अगर आप मुशायरों के शौकीन रहे हैं तो वो ये गजल जो है बहुत तरन्नुम में सुनाया करते थे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, और आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक समाना लगता है। ये कैफ भोपाली बहुत ही मशहूर वयोवृद्ध शायर भोपाल के, और उन्होंने ये गाना लिखा था, बहुत ही मशहूर गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से एक गुजराती कमेंट है जिसे मैं ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मुझे मिल गया। वो जिस तरह से लिखा है मैं अगर ये लिपि पढ़ने की कोशिश करूं तो लिख रहे हैं कि मुझे तो उदास गाने बहुत ज्यादा पसंद हैं, आए तुम याद मुझे जब जब बहार आई, इस तरह के गाने पसंद हैं। देखिए मैंने गुजराती लिपि भी पढ़ ली। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज की तेज प्रश्नावली जो है और दिलकश गाने हैं, शुक्रिया। और इसके अलावा चिलमन का अंदाज, आनंद बख्शी ने भी चिलमन पर एक गाना लिखा है, सही पहचाना है आपने, उस गाने की बाद में करेंगे। इसके अलावा मन्ना डे का भी एक चिलमन वाला गाना है, अगर आपको याद हो तो जिक्र कीजिएगा यहां पर। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि धुएं की लकीर का एक गाना लोकप्रिय हुआ था, तेरी झील सी गहरी आंखों में कुछ देखा है। एक श्रोता है जिन्होंने मुझे करेक्ट किया है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हम पुराने जमाने के लोग हो गए, उस जमाने में राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हुआ करता था, आपने सुधार किया, शुक्रिया राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता है, जरा सामने तो आओ चलिए, उनके अकेलेपन का गाना है। इसके अलावा कुछ और श्रोता है जिन्हें उदास गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से कोशिश ये कर रहा हूं कि देखिए काली घटा, गृहस्थी, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्में किशोर साहू ने निर्देशित की। दिल अपना और प्रीत पराई, मुझे क्यों लग रहा है कि दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित, यस दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित फिल्म है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा शुक्रिया इन तमाम जवाबों के लिए। अगला गाना आ रहा है और ये बताइएगा कि फिल्म प्यासा आपने कितनी बार देखी है।

एक श्रोता लिखती हैं कि प्यासा फिल्म बार बार देखी है फिर भी मन में प्यास रह जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं। एक श्रोता ये हैं जो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प लगेगा जब आखिर में आप कहेंगे अभी न जाओ छोड़ करके, दिल अभी भरा नहीं। आपको कैसे अंदाजा लगा कि आखिर में यही गाना बजेगा, क्योंकि यही गाना तो हमने रख छोड़ा है आखिर में बजाने के लिए। एक दौर था जब दूरदर्शन पर रविवार को फिल्म आया करती थी और रविवार को जो फिल्म आती थी उसका बहुत इंतजार रहता था। उस दौर में देखी गई जो सबसे यादगार फिल्म थी आपकी, वो कौन सी थी ये बताइएगा। दूरदर्शन के जमाने में जो रविवार की सबसे यादगार फिल्म होती थी, एक झलक इस गाने की बजा रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक अंश आज की इबारत में था और उसके बाद आपसे विदाई लेने वाला वो गाना जिसके बारे में अभी अभी हमने कमेंट पढ़ा।

0: ये गाना जैसे रोमांच पैदा कर देता है। शैलेंद्र के ये बोल, सली चौधरी के तर्ज, बेमिसाल गाना है। इस गाने को काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे शामिल करने का मन था। और अब वो गाना जो आप सभी से ये कहने की इजाजत देता है कि अब हम चलते हैं।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घमंड, हाँ घमंड यानी अहंकार, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो अत्यधिक आत्मसंतुष्टि या अपनी उपलब्धियों जैसे कि धन, पद, रूप या ज्ञान के गलत इस्तेमाल से पैदा होती है। ऐसे लोग हर समय अपनी महानता साबित करने के लिए अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई इन्हें इनकी गलती बता दे तो ये बहुत जल्दी आक्रामक रुख अपनाने लगते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते क्योंकि वे दूसरों को सम्मान नहीं देते। ये लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और उन्हें खुद से कमतर आंकते हैं। इन्हें हर जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत होती है। देखा जाए तो अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है क्योंकि ये दंभ हमारी बुद्धि और विवेक दोनों को भ्रष्ट कर देता है और अंततः ये व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बनता है।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा।

सीखने की क्षमता को नष्ट कर देता है, विवेक को भ्रमित करता है और रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वह दूसरों के अनुभव और सलाह को कमतर आंकने लगता है और हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। साथ ही ऐसे लोग हमेशा दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर ऐसे लोग नहीं छोड़ते। गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा सब कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अज्ञानी ये मान बैठता है कि मैं ही करता हूँ। बाइबल भी बार बार घमंड के खिलाफ चेतावनी देती है, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति अक्सर घमंड से भरा, आत्मकेंद्रित और दूसरों को तुच्छ समझने वाला होता है। लेकिन ये सभी बातें, ये सभी आदतें, यानी ये अहंकार मसीह के स्वभाव के विपरीत है।

घमंड यानी अहंकार जिस पर आज हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए है क्योंकि ये आपकी यानी हमारी

0: मेरा दिल भी है चंदन,
1: मैं चंदन की खुशबू हूँ,
0: मैं चंदन, मैं चंदन, मैं चंदन हूँ, बहू हूँ, इशारों को अगर समझ

अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये हम सभी जानते हैं। इसके विपरीत सरलता और विनम्रता हमारे सबसे सुंदर और प्रभावशाली आभूषण हैं। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व निखर कर आता है। विनम्रता न केवल हमें दूसरों को सम्मान दिलाती है बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के दरवाजे भी हमेशा खुले रखती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दुर्योधन, जी हां दुर्योधन, हर सलाह को साजिश समझता था क्योंकि अहंकार सवाल सुन नहीं पाता। जो खुद को हमेशा सही माने उसका अंत अक्सर अकेला होता है। इसलिए याद रखें, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अहंकारी नहीं, विनम्र बनिए। दूसरों में कमियां खोजने के बजाय अपनी कमियों पर हमें नजर रखनी चाहिए। साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक छिपी हुई ताकत और महानता की पहली सीढ़ी है।

0: सुनहरे खाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर

0: गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। प्रतीक्षा समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया, इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया।

0: कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा

0: कन्विक्शन है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: टू शिप्स विच आर फॉरन फ्लैग,
3: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
2: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमरीकी टैरिफ से कनाडा के अमरीका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रूपये की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
4: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
5: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले
0: दो दिन से भारी बारिश हो

0: रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है, लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14,00,000 लोग इससे प्रभावित हैं। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एप्स @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
3: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन, मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नखमे।

लता मंगेशकर और दिलीप महमूद की आवाजें शैलेंद्र कपूर, संगीत सलीम चौधरी का। सदाबहार नगमे विविध भारती।

0: मजरू सुल्तानपुरी के बोलते एस डी बर्मन की तर्ज। अच्छा, उसने की आवाज थी, फिल्म का नाम था सुजाता।
1: पानी आज मोरे अंगना।

0: सुनहरी खाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।

0: अभिनेत्री फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा। सुनिए उनकी जिंदगी उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी। मन चाहेगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया

0: केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: तो भाई, मनचाही गीत कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू किया जाए और आप सभी श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं। नागपुर जिला पाटन सावंगी से गजानन लिखार, मनोज लिखार और संचना लिखार, महमूद आरिफ, आरिफ फातिमा, एम एच शरीफ, आरिफ हुसैन और साथियों की चिट्ठी रामना हल्ली बेंगलोर से आई है। और ये जो चिट्ठी है, मौजे गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार और श्रीकांत की है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन की चिट्ठी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। और इसके अलावा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, न्यूटन चिकली परासिया, छिंदवाड़ा से अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविन्द्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुतेश वाघ और ऋतिक वाघ की फरमाइश पर ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार, राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम आंधी।

0: जवान जब ये तुम्हारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और जी हाँ बिल्कुल सही झलक सुनाई दी आपको, यही गाना आगे बजने वाला है। लेकिन पहले उन श्रोताओं के नाम तो आपको बता दें जिनकी चिट्ठियां हमें मिली हैं। पुणे से पंकज वडोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वडोदे और चंद्र प्रभा वडोदे, और ये चिट्ठी अलंकार मार्केट देवास से मकबूल हुसैन बोहरा, मुस्तफा हुसैन और नजमुद्दीन की है। बाबू रामानंद, बीना आनंद और खुशी आनंद ने नंदग्राम गाजियाबाद से हमें खत लिखा है। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया और प्यारे बाबू, और गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज और प्रमोद, आनंद रत्नानी, अजय, रेखा रत्नानी, अभय, भाग्या और मीरा रत्नानी ने नर्मदापुरम से इस गाने की फरमाइश भेजी। सुनते हैं हीरांझा फिल्म का गाना।

अगले गाने के लिए आप सभी की फरमाइश आई है। छत्तीसगढ़ बेमित्रा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सुनील कुमार, वीरेंद्र सारथी, रुद्र कुमार और ब्रिजकांत सारथी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहू, रंजीत कौर मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हरिया बाजार पूर्णिया से दिलीप कुमार सेंचुरी, बिमला रानी सेंचुरी, शिम्पी रानी साह, सुरेश लाल साह और अमित राजा। और ये फरमाइश आई है कर्नाटक बेंगलोर से मेनका

तारा की, इसके अलावा जी यही एक नाम है और अनीता, प्रीति, येसु और निसार की फरमाइश है और कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन और दीपक जैन की लुधियाना पंजाब से फरमाइश हमें मिली है। इसके अलावा एक और चिट्ठी और वो चिट्ठी भेजी है पूरे बाकड़े परिवार ने, जिसमें पवन कुमार, ज्योतिताई, संतोष राव बाकड़े शामिल हैं अकोला से। और ये है आपकी पसंद का गाना, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगली फरमाइश है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनकर, रेणु जीनकर, अजय प्रिंस और कुलदीप की, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी, कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ना खानसारी, शहीद अहमद, नफीस अंसारी, अनाविया अजान और अयान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, रहीम मुन्ना, महीन फातिमा, अदीब, दानिश, आसिफ, जोहरान शेख, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमिंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मंजू चौहान और कामिनी चौहान। कलाकार फिल्म का गाना इंदीवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश है, महादेव डोंगरे राधा नगरी कोल्हापुर से। ये श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके साथ ही घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं। काटोल नागपुर से सुरेश मलमकार, श्रीमती रजनी मलमकार। ये फरमाइश बीड शहर से रंजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रंजना, रश्मि और गबरू पहलवान की, महेंद्र सटकरकडे, विजया सरकटे और मिलिंद वरुण जौल का से, और वर्धा से दिलीप खैर का, शोभा रविन्द्र सारिका और स्वरा।

0: सुभद्रा सुभद्रा,
1: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है छत तक ठीक नहीं करवाई, अब देखो ये देखो जगह जगह से टपक रही है।
0: अरे मैं कहता हूँ तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं, शाम को जो चाट खाई थी लगता है बहुत खराब थी, खाकर खाकर और तबीयत खराब हो गई।
1: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है।
0: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
1: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
0: हा?
1: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
0: क्या क्या क्या, अरे अरे अरे जी जी जी जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी है? कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया?
2: कौन? जीवनलाल जी यहीं रहते हैं क्या?
3: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
0: कौन है देखूं तो जरा।
2: कौन है?
0: अरे पुलिस।
2: जीवनलाल जी आप ही हैं?
3: हाँ यही है जीवनलाल जी। अरे बाबा बहुत गंडगोल हो गया है, तुम्हारा जो फादर था ना।
0: हाँ?
3: वो हमारा पागलखाने में सुसाइड कर लिया।
0: क्या?
3: इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है। हाँ? अभी चलना है।
0: अच्छा अच्छा चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूँ, अभी आया।
1: बात क्या है, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
0: पागलखाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
1: पागलखाने से क्या?
0: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ।
1: जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थी ही, अब मर कर भी चैन नहीं लेने देंगे।
0: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा।
1: अरे अरे इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो, कल सुबह चले जाना।
0: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे, इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
1: लो अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
0: बक बक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है, और सुनो कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
1: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
0: हाँ, हाँ,
1: ये लीजिए।
0: हाँ हाँ अच्छा सुनो मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए
1: जी। वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछा का कुआं से उनका लाश को निकला गया। शायद वो कुआं में कूद कर उन्होंने जान दे दिया। हाँ, अंदर है। ओरे बाबा, तो मेरा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में गिर गया।
2: कुएं में कूद गया? अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
1: ओरे बाबा, की रकम बात करता है तुम, हा? हम सभी का पूरा ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
2: हाँ, सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
1: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
2: अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
1: जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा, पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
3: अच्छा।

0: कितनी बदबू है यहाँ।
1: ये देखिए, इनको पहचानता है?
0: जी जी, यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
1: तुम्हारा फादर? माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल हाँ है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता और लाओ, नहीं देने से सारा कुछ तोड़ता फोड़ता। ओ ओ देखो, ओ खिड़की का ग्लास सब उसी ने तोड़ा। माना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। He was a different kind of a lunatic.
2: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर, मेरे बेटा को घसा कर लीजिए। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है, मैं पागल नहीं हूँ।
1: बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया है? तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
2: मैं पागल नहीं,
1: यहाँ राजा हो तुम का मुद्दा है।
2: पागल नहीं हूँ,
1: चलो बाहर जाओ।
0: डॉक्टर साहब, ये कौन है?
1: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था।
0: हाँ, लड़का लोग छोड़ गया था।
1: हाँ,
0: लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगता।
1: हाँ, नहीं लगता, पर हाय ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता, पर हाय।
0: हाँ, लेकिन लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे।
2: हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जाने दो,
1: मेरे बेटे को पकड़ो, उन्होंने बंद करा मुझे। अब आप घर जाइए, समझा? हाँ। बारिश भी थम गया है ना। हाँ। और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
0: जी। खुश बाबू, आप ऐसा करिए। हाँ। आप जाइए।
1: हाँ।
0: मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
1: ओरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक
0: हाँ।
1: है ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है। हम जाता है।
0: पिताजी, ये आपने क्या कर डाला, क्या कर डाला आपने पिताजी।

0: पिताजी,
1: पिताजी ये आपने क्या कर डाला?
2: क्यों, क्या हुआ?
1: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
0: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी है इस घर से।
1: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
0: 50 लाख भी अगर दें तब भी नहीं बेचूंगा। और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
2: पिताजी मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
0: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
2: पिताजी आप कुछ समझिए तो सही।
0: क्या समझूं, क्या समझूं मैं?
2: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए और
0: क्या?
2: और फिर पिताजी मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
0: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30,000 मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को।
2: 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
0: होश में रह के बात करो जीवन।
1: होश में तो पिताजी आप नहीं हैं, मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
0: क्या, तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
2: अरे अरे अरे अरे आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी। मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
0: क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम?
2: आग लगाना चाहता हूँ इस घर को। यही चाहते ना तो लीजिए, ये रही माचिस।

0: पागल हो गया तुम।
1: हाँ हाँ
0: बिल्कुल पागल
1: हो गया हूँ मैं पागल। मकान बेचकर दो मुझे पैसे वरना रोककर तुम अभी इसका भाव उठाने को। मैं
0: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ छोड़ माचिस को।
1: नहीं
0: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
1: नहीं छोड़ूंगा,
0: नहीं
1: छोड़ूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं होता।
0: नीच बेहूदे बाप से हाथापाई करता है, छोड़ माचिस मैं कहता हूँ।
1: पकड़ो लो, पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
0: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
1: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को?
0: इस तरह की औलाद से तो बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई।
1: क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7 लाख रुपया दिया है उसके बाप ने उसे।
0: अंजनी, अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन तो 7 क्या 70 लाख का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए।
1: पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये मकान आपको बेचना है या नहीं?
0: एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन?
1: ठीक है तो मैं भी आपकी जिद तोड़वा करके ही दम लूंगा।
0: हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको। और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से।
2: अरे पिताजी क्या हो गया?
0: अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो। अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी। और ये भी, मैं शाम तक वापस आऊंगा।
2: अरे क्या बात हो गई भैया?
1: अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे।
2: ओ तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी?
1: अरे ज्यादा, ये तो कहो संपत मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो
2: इस तरह काम नहीं चलेगा भैया। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही है विवेक नगर में। मेन मार्केट में ही दुकान है और 3 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे?
1: अरे आए थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे।
2: 15 लाख? फिर
1: जी बात ही नहीं की इस पुड़ो तुम्हारे बाप ने।
2: आखिर क्यों?
1: नहीं बेचेंगे। अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ।
2: 15 लाख? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़ी दुकान भी ले सकता हूँ। 4.5 लाख रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई?
3: अरे भाई मैं हूँ अवधेश।
2: पता नहीं कहाँ से आ मरा ये।
1: सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना।
2: अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो।
3: अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो।
4: भाभी जी कहाँ?
1: भाभी तुम्हारी बाजार तक गई है।
3: बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ?
1: अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे।
3: लो यार पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो।
2: देखो अवधेश, मजाक मत करो।
1: अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग इस मकान को बेच सकते?
3: जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो नहीं, मेरा मतलब है उनके रहते।
1: अरे यार उन्हें अभी क्या होने वाला है, इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना।
2: बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है।
1: अरे जी तो करता है जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डाल।
3: अगर इस तरीके की मूर्खताएं सोचनी है तो मैं चलता हूँ यार।
2: अरे भाई तुम तो भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना।
3: भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल।
2: असंभव तो नहीं है?
3: कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवजोत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना?
2: वो नवजोत चिकित्सक? अच्छा अच्छा, वो पागलों वाला अस्पताल। अरे वहाँ जहाँ वो 2-3 बार छापा भी पड़ा था।
3: और उसका आर्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था। क्यों ठीक है ना?
2: ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है उदेश बाबू?
3: देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए।
1: क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार।

0: एक अच्छे खासे आदमी को पागलखाने में भर्ती कैसे करवा सकते?
1: एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना।
2: यार क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा।
1: देखो, अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा।
2: खा चुके वो ये चूर्ण?
1: अरे खाना तो खाएंगे, बस उसी में चुटकी भर मिलाकर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यार से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे।
2: क्या?
1: उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा।
3: लेकिन अवधेश, पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
2: और क्या?
1: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूँगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
2: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
1: और क्या, एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो दो तीन जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
2: मगर नवजोत वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
1: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ, वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
2: मगर अवधेश, इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
1: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20 साल 25 साल या।
4: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
3: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
1: अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खोकर अफसोस ही क्या होगा।
4: पिताजी, क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
5: अरे झूललाल बाबू, अभी गया नहीं आप? यही बैठा है।
4: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।
6: बड़ी देर कर दी आपने आने में, संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
4: हाँ? संपत,
3: नमस्ते भैया।
4: नमस्ते नमस्ते, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
3: अब हम बूढ़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे।
4: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
3: पता चला, ये तो होना ही था। एक दिन
4: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
3: जी।
4: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहां था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
3: यानी एक और मुसीबत।
4: हाँ? एक और मतलब?
3: अब आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
4: अरे अरे, लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
3: क्या बताऊँ, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गई। रोज ही रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है, जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
4: लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
3: हाँ, मिले थे भैया, ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है, फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था, जो ज्यादा खर्च होने पर

0: व्यर्थ होता।
1: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
0: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो?
1: अरे नहीं नहीं, तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जगह सही ऊपर से होगी।
0: खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
1: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
0: अच्छा भैया चलता हूँ, वो फिर आऊंगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो भैया वो
1: हाँ?
0: वो
1: कुछ कहना चाहते हो?
0: भैया पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मतलब है कि।
1: अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
0: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया, वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ
2: सुनो कर... जी बात सुनो जरा।
1: हाँ हाँ ठीक है भाई संपत, तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
0: क्या कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते भैया।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते भाभी।
1: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
2: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
1: अरे ठीक ही कह रहा हूँ। ये छड़ी किसकी रखी है?
2: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
1: हा? अवधेश? अवधेश कब आया था यहाँ?
2: कल जब आप काम पर गए थे। वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
1: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहाँ?
2: क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना। हा? उसी से मिलता है, शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
1: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है सांप है वो, सांप सब कुछ बेच कर खा जाएगा।
2: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
1: अरे हाँ हाँ, जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं तक चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सुलूक कर रहा हूँ। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था।
2: उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ, मुझे नोच खाओ। समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे।
2: हाँ हाँ जरूर, उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको? उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप।
1: क्या बोली क्या बोली क्या बोली? बोलो बोलो, जोर से बोलो, चीखो चीखो ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
3: अरे जी, क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
1: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? हाँ क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
3: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
1: कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है मेरा, समझे?
3: मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने?
1: उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
3: बाबा ने? वो जो पागल खाने में बंद थे?
1: हाँ हाँ वही
3: बाबा ने।

0: आत्महत्या की।
1: क्या क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
2: बेटे, तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने
1: चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर।
0: पिताजी, क्या हो गया है आपको? माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है? आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाए।
1: अच्छा अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
0: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
1: मैंने क्या मतलब? और क्या बताया अवधेश ने तुझे? और क्या क्या बताया तुझे? कौन खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
0: समझिए आप, हाँ? आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
1: क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
0: नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से।
1: हाँ? और ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
0: हाथ में आपसे क्या मतलब? आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे, वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूँ मैं।
1: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर? अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ खिलाओ खिलाओ जहर मुझे, खिलाओ।
0: ये खिलाओ। क्या अनशन बक रहे हैं आप? कौन क्या खिला रहा है आपको?
1: अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा, और तुम माँ बेटे को निकाल करके ही दम लूंगा। अवधेश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो? अरे अरे कमबख्तो, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
2: क्या कह रहे हैं आप?
3: अरे भाई क्या हो रहा है?
0: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए लगता है।
1: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल, नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा वहाँ।
3: हाँ, आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। हा? क्यों अनिल भतीजे?
1: क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं।

जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिराज का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: आज के बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत।
2: बहुत बहुत स्वागत आलोक गागड़ेकर जी विविध भारती के स्टूडियो में।
3: जी जी जी नमस्कार धन्यवाद।
2: आलोक जी रेडियो से जो आपका जुड़ाव है वो जब हमारी स्टूडियो में आते आते बातचीत हो रही थी तो बहुत सारी बातें सामने आई, तो मुझे रेडियो से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं बताइए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं।
3: जी यानी ये कह सकता हूं मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है बचपन से।
2: जी
3: क्योंकि घर में तो टीवी भी था, कलरमैन टीवी था हमारे पास और सभी संसाधन थे, लेकिन मेरी नानी माँ का घर था जहां बिजली भी नहीं थी और वहां एक लकड़ी का रेडियो था।
2: वो किस जगह रहती थी?
3: वो हमारे अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद हमारा जो एक मोहल्ला है, जो हमारा गांव है छारा नगर गांव, तो वहां पर रहते थे। तो सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता।

0: और वही हमारा मॉर्निंग एक उठने का प्रण बनता था कि रेडियो शुरू हो गया, इसका मतलब सुबह हो गई है। अब रेडियो पे ये गाने चल रहे हैं, इसका मतलब दोपहर हो गई है। तो यानी कि जो रेडियो में भी बार बार कहा जाता है कि रेडियो विविध भारती, जीवन का संगीत, तो सच में वो जीवन का संगीत बचपन से ही जुड़ा था। तो मैं बच्चा था, यानी 11-12 साल का, और मुझे क्या समझ है गीतों की, लेकिन बावजूद उसके मुझे वो बीच बीच में आती हुई एंकरिंग, बीच बीच में आते हुए एड फिल्म्स के जो जिंगल्स, और इन सबके साथ इतना जुड़ाव हो गया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: ओहो,
0: मुझे लगा कि मैं नहीं, अभी के अभी रेडियो रिपेयर करो। और हमारे नानी माँ का आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो तुरंत एक नया रेडियो ले आते,
1: हाँ,

0: परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो तुरंत एक नया रेडियो ले आते। तो मैं एक 11 साल का लड़का रेडियो लेकर बाजार में घूम रहा है कि कोई इसे रिपेयर कर दे, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दिनचर्या जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो रेडियो से वो जुड़ाव था कि जैसे एक मित्र आपका साथ छोड़ दे तो कैसा फील होता है।
1: तो प्यारी बात है कि आप इतना ज्यादा जुड़े थे, तो फिर वो रेडियो सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया?
0: वो रेडियो तो नहीं सुधर पाया, लेकिन इतना है कि नानी माँ और ये लोग इतना प्यार करते थे मुझसे कि उन्होंने फिर मुझे एक नया ट्रांजिस्टर रेडियो, जो उस वक्त मुझे अभी भी कीमत याद है कि 92 रूपीज में हमने खरीदा था, जो मेरे पास ही रहता था। और तब फिर धीरे धीरे समझ बनी, हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो क्रिकेट रेडियो के अंदर क्रिकेट सुनना, यानी कि वो स्टेडियम में जो आनंद आता है उससे भी ज्यादा आनंद आपको रेडियो पे सुनने का आता है, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक खिलाड़ी की हरकत जो हमको बयां करते थे रेडियो पर, वो पूरा विजुअलाइजेशन जब सामने आया तो पता चला कि ये केवल मशीन का पुर्जा नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसा यंत्र है जो शायद मनुष्य के साथ बातें कर रहा है, यानी कि एक हमारा गिव एंड टेक होता था। ये फिर आगे चल की बातें है, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जुड़ा तो वहां पर भी रेडियो सुनते थे हम, क्योंकि एक FM मिल ही जाता था कहीं पे भी, है ना। तो वहां पर भी ऐसे लगता था कि आज मैं दुखी हूं ये रेडियो को कैसे पता चल गया,
1: अरे वाह वाह वाह,
0: आज मेरी मेरे मित्र के साथ अनबन हुई ये रेडियो को कैसे पता चल गया, और उन्होंने आज वही गीत क्यों चला दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा या प्यार प्यार ना रहा या इस तरीके की। तो जिंदगी के साथ आपको साहित्य, संगीत और अभिनय या मनोरंजन, इन सबको जोड़ने वाला अगर कोई यंत्र है इस सृष्टि पे तो वो रेडियो है। और पूरी पृथ्वी में मुझे लगता है कि हमारा देश का, भारत देश का जो विविध भारती और आकाशवाणी रेडियो है, ये विशिष्ट प्रकार का रेडियो है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूं और आपके सामने प्रस्तुत हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है।
1: क्या बात है, तो ये आपका रेडियो से इतना ज्यादा जुड़ाव रहा, विविध भारती से इतना जुड़ाव रहा। बचपन में अभिनय की ओर रुझान कब हुआ था आपका?
0: अभिनय का ऐसा था कि स्कूल के दिनों में जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था तो उसमें मुझे एक बार टीचर ने कहा कि आपको टीचर बनना है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है। तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय, तो सबसे सुंदर मजबूत टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी, कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदी विषय के लिए पार्ट लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा, और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी। तो वहां टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा, वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, यहां तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक, जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे
1: जी,
0: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
1: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
0: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी, यानी कि ये जर्नी चली, कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था, क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ न कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं, कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वो ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये, कि नजर हटी की दुर्घटना घटी, एक अभिनय यानी कि 2-2.25 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हजार लोगों का एप्लीकेशन वहां उस वक्त गया था।
1: हमें यही सोचा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है, तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
0: कड़ा मुकाबला तो बेशक था, और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ।
1: ओ,
0: तो ये भी एक जिंदगी का सबक है
1: तो बहुत दुखी हुए होंगे।
0: बहुत दुखी हो गया था मुझे, ऐसे लगा

0: पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो। जब अगर आप एनएसडी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे, यानी कि मिला जुलाकर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
1: क्या बात है। यहां रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहां बजाया जाए?
0: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है,
1: बिल्कुल,
0: और वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाए।
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी जी।

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे।
0: ओके।
1: तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे।
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूं गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको, थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूं, तो उन्होंने कहा कि 100% करो, लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है, और

0: यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे। तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो, और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजरात
1: लगातार, उनका तो बहुत अच्छा, हाँ अच्छे प्लेज अभी भी चले।
0: हाँ, अभिजीत जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों
1: जी,
0: भाई है
1: जी।
0: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है कि आपका काम हुआ तो ठीक है वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
1: वाह वाह,
0: तीनों तीन वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
1: क्या बात है।
0: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला।
1: वाह वाह।
0: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तु तु तु तु तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था जो जॉनी लीवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी वैसी, हाँ, इंकलाबी कलम रही शुरुआत।
1: तो ये सब उन्होंने लिखे?
0: उन्होंने ही लिखे। दो शॉक सही नगर वस्तु तो, और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहां थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु।
1: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
0: जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा यह है कि आप वहां जाते हो ना तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहली हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, असम से, तो आपको असामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
1: अरे गजब।
0: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई किरदार में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, एमपी का एक्सेंट ले लेते हैं। और किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे, तो वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे, तो जब हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है, तो हमने कहा कि हाँ भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और सारी चीजों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ
0: जाएंगे, हारमोनियम पर बैठ जाएंगे तो वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे KN पणिकर जी के थिएटर में केरला, तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था ये तैया तैयम, एक रिचुअलिस्टिक थिएटर केरला का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है
1: जी।
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर

0: दिन आ रहा है, तो हमको वहां पर वहां की जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहां पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में, आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जितने फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहां प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ, बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहां लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे
1: और
0: सीनियर कहीं रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे वहां पर,
1: अच्छा,
0: वहां थांगटा सीख कर आए, हम
1: हाँ
0: केरला गए तो हम वहां कल्लरीपयट्टम सीख कर आए, तो आज भी
1: हाँ
0: वो कल्लरीपयट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूं अपना।
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होके एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजते हैं।
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है, कि जहां से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है,
1: वाह, सही बात
0: रोज
1: है।
0: रोज। यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास अब, लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे, तो और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना, हम मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर
0: जी
1: मुंबई की बातें करेंगे।
0: जी जी जी
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहाँ पर?
0: जी, धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है, जो
1: हाँ
0: दोनों सात अजूबे इस दुनिया में, आज भी
1: वाह,
0: अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है
1: बिल्कुल अलग।
0: माता को लेकर, कि ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी,
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते हैं ये गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, पर थोड़े से भई टूटे ना।

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूं तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था।
0: अच्छा।
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा ऐसा।
1: हाँ।
0: और आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर लेते
1: हैं? हाँ, क्योंकि हमारे वहां बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं। तो बहुत
0: तो एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ जिसका नाम रुक्ष्मणी है और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बंबई आए तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बंबई निकलना है।
0: तो ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रहे।
1: हाँ, क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे कि अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को चाहते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड़ में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन, अच्छे से प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी, रहने के लिए हॉस्टल, हवा गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया, अब यहां क्या करेंगे। तो यहां पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मंच देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, है ना? उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था, आगरीपाड़ा, मलाड़ से आगरीपाड़ा जाना। तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था,

0: और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपए पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपए और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हजार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया।
1: जी जी,
0: और फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
1: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां सिखाते थे बच्चों को, वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
0: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे।
1: लो, अब ये समझाना भी मुश्किल है।
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूं क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूं। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी। तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था।
1: ओ ओ ओ,
0: वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे।
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना अपना काम कर पाए,
0: अपना अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की। अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो।
1: यस।
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की।
1: अलग अलग,
0: ये थिएटर एज अ थेरेपी। तो बच्चे हंसते थे और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया, जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना जो रोजमर्रा, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया कि लोगों से मिलना।
1: वो एक प्रोसेस है कि
0: वो एक प्रोसेस है, वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे, और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए
0: नहीं थे, नहीं थे,
1: अपने
0: नहीं।
1: फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
0: जी जी जी जी मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर था
1: जुहू में,
0: और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे
1: जी,
0: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जींस का, जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था क्योंकि वहां वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस। तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको ऐसे निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो 5-5 एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक। तो वो 5 फोटो से हमने हमारी यात्रा शुरू की। और मुझे याद है कि जय मां संतोषी माँ की फिल्म रिमिक बन रही थी उस वक्त दोबारा, तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, 2-4 नंबर लेके निकला था। तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं
1: बड़ौदा
0: चले गए, वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया। चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली, है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था। अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहां तक हो जाए।

0: वहां गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो। तो मैं बोला चलो यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे। लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन।
1: ओह,
0: हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है, ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा। और पहली फिल्म मैंने की थी टशन। ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ
1: और ये पहली फिल्म बनी।
0: पहली फिल्म बनी।
1: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा?
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। अनिल कपूर
1: मल्टी स्टार।
0: हाँ, अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था। और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय कृष्ण आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावत है जो सुनी थी एनएसडी में कि यार क्या करोगे, भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे। तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए। तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं बोला सर मैं बोल लूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कि बताओ तो सही आपको आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं।
1: ओके।
0: अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था। तो प्रिंट आउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। तो मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा इसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंट आउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ वो डायलॉग, कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहां क्या कर रही। लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है, सीता पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते ऐसा कुछ। हमने हंसा तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा। वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार, कि अपने आप को
1: पर्दे पर
0: 70 mm के पर्दे पर, कैमरा ये वो। तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी।
1: वाह, तो
0: मराठा मंदिर अपने आप में एक
1: ऐतिहासिक थिएटर,
0: ऐतिहासिक थिएटर है। तो दिस इज अ थिंग।
1: वाह। और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा?
0: हाँ, फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा।
0: एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी। राजपाल यादव जी हो गए, और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे एनएसडी रिपेट्री के। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे, अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार। और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए।
1: बिल्कुल। बजरंगी भाईजान में भी आपने काम किया?
0: जी, बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन।
0: जी
1: बिल्कुल, उसके बारे में बताइए कैसा रहा?
0: बढ़िया। उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे। और उसमें भी यही था कि 3-4 लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था, बोला हम बोल लेंगे सर। अब वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था?
0: हाँ, डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे। और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था।

0: अरे बाप रे।
1: कि जहां कम पड़ जाए
0: हाँ,
1: तो हम बोल देंगे। तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि
0: हाँ,
1: तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई।
1: जी
0: टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: हाँ
0: ये बातें
1: हाँ, हम करेंगे। तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो वैसा वहां वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा, टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है जो गुजराती थिएटर है जो पैसों वाला थिएटर है तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूँ,
0: पंकज त्रिपाठी जी,
1: पंकज त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
0: हाँ।
1: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले जाते हैं।
0: अरे बाप रे,
1: दिस इज अ वन लाइन।
0: जी जी
1: तो ये ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे मिलते
0: और बहुत
1: हैं।
0: पुराना आपका तो नाता है, आपके सीनियर रहे हैं।
1: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके, आप तीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होता है।
0: हाँ।
1: ये बहुत मायने रखते हैं, तो वही मेरे साथ भी हुआ।
0: जी तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं और दर्शक भी प्लेस को अलग अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
1: बिल्कुल, मुझे तो जहां तक लगता है कि आज से 3000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था।
0: जी
1: बिफोर बीसी में हम, बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं तो वहां से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है, हम ही कमजोर पड़ गए, करने वाले ही कमजोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है, आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा।
0: हाँ,
1: तो कैसे ऑक्सीजन,
0: हमेशा ये कहा जाता है कि थिएटर ऑक्सीजन पर है।
1: हाँ, हमेशा कहा जाता है, तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहां पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए, बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो, और इसमें सबसे बड़ा रोल है अगर मैं कहूं ना कि

0: थिएटर घर घर तक पहुंचाने में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाजी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य है उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबकीय आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विधा है ये
1: अंकुर जी ने,
0: अंकुर जी की विधा है ये
1: जी।
0: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको। हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें। आपके पास कहानी है और मंच है
1: बस,
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले अगर एक आध हैलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी के हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा। अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम,
0: सेम टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझकर कर रहे हैं कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में।
1: बिल्कुल।
0: और व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं।
1: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं चल रही हैं। आप तो कई भाषाएं जानते हैं और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहाँ मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया?
0: मैंने गुजराती थिएटर किया, मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको।
1: अच्छा,
0: हम लोग ट्राइबल है एक्चुअली, वो तो
1: मराठी का एक प्रकार है।
0: नहीं, ये
1: का एक प्रकार है,
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है।
1: अच्छा,
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे बाबा,
0: अगर आप कहे तो मैं उस बोली में ना, मेरी एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था।
1: तो आपने वो किरदार वैसा बनाया या?
0: नहीं नहीं, मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर जिन्होंने ओ माई गॉड लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतू बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहाँ जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे की तोड़ जा रहा था सांजे सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना। एकदम डिफरेंट,
1: कुछ गुजराती के आ रहे हैं,
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों के ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से कुछ ले लिया,
1: मिक्स है,
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया। तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी यानी कि नुक्ते उकते लग जाते हैं ठीक ठाक, तो ये है। अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूँ
1: जी।
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि एनएसडी जाएं और मुंबई आ जाएं बस लाइफ सेट है।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, बिल्कुल
1: तो
0: नहीं।
1: उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए।
0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है
1: जी,
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यवसायिक रंगमंच की तालीम देता है, लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है।
1: हाँ।
0: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं।
1: हाँ।
0: ना,
1: और मुंबई शहर आपको पीसता है,
0: पीसता है, जलना पड़ता है, और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है
1: जी।
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीजों में भटक जाते हैं, तो उन चीजों में अगर ना भटके और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है। जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो।
1: बिल्कुल,
0: मैं अपने लेवल पर सफल हूं,

0: तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है। चलते चलते एक गाने की फरमाइश है
0: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे,
1: जी।
0: और रेणु जी
1: वाह
0: की
1: वाह,
0: कहानी पर उन्होंने जो
1: तीसरी
0: फिल्म
1: कसम बनाई।
0: तीसरी कसम, उसका अगर आप सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या
1: वाह
0: तेरे
1: वाह
0: मन में
1: वाह, जरूर ये गाना सुनाते हैं
0: जी।
1: आपको।

0: आलोक जी बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना समय देने के लिए।
1: जी जी जी धन्यवाद और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है, और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है। तो रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी।

0: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल।

दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है। आइए अब आपको अवगत करवाते हैं हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण से।

हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रमों में अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे 5:05 पर राजस्थानी लोक संगीत, जिसमें आज आपको सुनाएंगे सीमा मिश्रा की आवाज में कुछ राजस्थानी लोकगीत। वहीं सदाबहार नगमों के सफर पर आपको लेकर चलेंगे रात को 10 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर और रात 9 बजे।

जयपुर से प्रसारित कार्यक्रमों में शाम 7 बजे आप सुनेंगे कि कार्यक्रम किसान वाणी और शाम 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। वहीं समाचार आप सुनेंगे शाम 6:00।

तीस मिनट पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:51 पर, जिसमें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से कार्यक्रम चिंतन आप सुनेंगे प्रातः 6:05 पर और कार्यक्रम वंदना 6:10 पर। वहीं प्रातः 6:30 पर हमारे

वहीं प्रातः 6:30 पर हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रमों में आप सुनेंगे रामचरितमानस गान और 6:45 पर समय रहेगा किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती नी बात का। वहीं वाग्मी लोक संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 6:50 पर। कार्यक्रम वातायन आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर। वहीं दिल्ली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुन पाएंगे प्रातः 8:15 पर और राजधानी लोक संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 8:45 पर। वहीं कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे प्रातः 9:10 पर एवं प्रातः 11:00 और सदाबहार नगमों के सफर पर आपको लेकर चलेंगे प्रातः 11:30 पर। प्रेरित भारती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:30 पर, प्रातः 9:30 पर और दोपहर 12:00। वहीं समाचारों में आप सुनेंगे प्रातः 6:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार और प्रातः 8:00 समाचार प्रभात। वहीं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे प्रातः 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत में।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
1: है
0: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

दिन भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आज आपको सुनवा रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में राजस्थानी लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। शाम के 5:30 में है, आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारत।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल अनुराग शर्मा के और संगीत प्रीतम का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लकी से। आवाज अदनान सामी की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत अदनान सामी का है।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की

0: यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा। सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
1: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म देवरा से, आवाज शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कौशल मुनीर के और संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र का।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?

0: भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

मीनाक्षी से आवाज अलका याग्निक की है। गीत के बोल राहत इंदौरी के और संगीत एआर रहमान का। थोड़ी ही देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। शेष कार्यक्रम समाचारों के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृहमंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरूपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
1: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुंठित राजनीति कांग्रेस

0: राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। यह मैच अम्स्टरडैम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जारी है कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सैम बहादुर से, आवाज श्रेया घोषाल और सोनू निगम की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे।

0: सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म चमेली से। और गीत के बोल इरशाद कामिल की और संगीत संदेश शांडिल का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्ररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: श्रोता गीत आपने सुना फिल्म जुग जुग जियो से, आवाजें कनिष्क सेठ और कविता सेठ की थी। गीत के बोल ट्रेडिशनल और संगीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ का ही था।
1: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता,
2: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
1: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
2: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
2: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज़, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म रहना है तेरे दिल में से। आवाजें सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत हैरिस जयराज का।
1: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता,
2: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
1: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
2: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
2: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज़, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 होने पर हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास और कारोबारी सुगमता को मजबूत करती है। केंद्र सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगाई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए व्यापक तैयारियां, संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता भी बढ़ी। और राज्य में मॉनसूनी गतिविधियां फिलहाल धीमी, हालांकि कल से उत्तरी पूर्वी हिस्सों में इनकी बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास को बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला हैं। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में आए विदेशी मेहमानों और प्रतिनिधियों ने आज ऐतिहासिक विरासत स्थलों का दौरा किया। उन्होंने आमेर किले और सिटी पैलेस तथा हवा महल को देखा, साथ ही शहर की समृद्ध वास्तुकला, पारंपरिक शिल्प और समुदाय आधारित पर्यटन पहलों के बारे में भी जाना। इससे पहले ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने कल जयपुर घोषणा पत्र पारित किया। इसमें सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इनमें पर्यटन के क्षेत्र, एआई के उपयोग, सतत और जिम्मेदार पर्यटन, पर्यटन कौशल और क्षमता निर्माण तथा निर्बाध यात्रा की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ब्रिक्स के 9 देशों ने भाग लिया। इसमें ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और यूएई के पर्यटन मंत्री भी शामिल हुए। साथ ही चीन, इथियोपिया, इंडोनेशिया और रूस के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख भी बैठक में मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। ये कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है। इस साल जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की बाहर

0: मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग के भीतर और टेलीविजन उद्योग तथा डिजिटल मीडिया के बीच बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन की अवधि की सीमा वर्ष 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। वर्ष 2006 में देश में केवल 62 टेलीविजन चैनल थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 900 से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने नजरिए में बदलाव किया है। इसके स्थान पर अब सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के जरिए इसे पुरस्कृत किया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख किया।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 309 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव संबंधी गतिविधियों को लेकर बनाए गए नियंत्रण कक्षों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही निकाय चुनाव के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण का काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा आगामी चुनावों को लेकर स्वीप कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज श्रीगंगानगर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं चुरू में आज स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से मानव श्रृंखला बनाई गई। उधर पाली में स्काउट गाइड शिविर में मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई। निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। 27 अगस्त से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के लिए जयपुर में 15 नामांकन केंद्र बनाए जा रहे हैं। हर केंद्र पर 10 वार्डों के उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इससे कलेक्ट्रेट सहित शहर में किसी एक स्थान पर भीड़भाड़ की स्थिति नहीं होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश परीक्षा AIAPGET के दौरान जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर पावर सप्लाई ठप्प होने की गंभीरता से लेते हुए तुरंत संज्ञान लेकर प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। 49 अभ्यर्थियों के लिए ये पुनर्परीक्षा अब 1 सितंबर को होगी। देश भर में

0: 1900 से अधिक उम्मीदवारों के लिए आज ये परीक्षा 200 सेंटरों पर ली गई। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बीकानेर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तस्करी से अर्जित उनकी अवैध संपत्ति को फ्रीज किया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि अप्रैल से अगस्त तक 200 से अधिक कार्यवाही की गई और 250 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्यवाही जारी है।
1: ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत एक प्रमुख कार्य जो बीकानेर पुलिस द्वारा किया गया है वो 68 एफ की कार्रवाई है, जिसमें कि अवैध मादक पदार्थ के जो तस्कर हैं उनकी जो संपत्तियां हैं उनको सीज करने का कार्य जो है वो बीकानेर पुलिस द्वारा किया गया है। और आगामी समय में भी इसी प्रकार 68 एफ की और कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की जाएंगी। फिलहाल अभी तक हमने 16 इस्तगासे जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सबमिट कर दिए हैं। ये संख्या फिलहाल राजस्थान में सबसे ज्यादा है।
0: राज्य में मानसून की गतिविधियां फिलहाल थोड़ी कमजोर देखने को मिल रही हैं। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बरसात का दौर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में मानसूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। कल अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा और जयपुर सहित 17 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर मौसम के आज ही करवट बदलने के आसार हैं। कई जिलों में गरज के साथ झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। धौलपुर और करौली में बारिश के साथ ही तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू तथा डीडवाना कुचामन में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य के बांधों में पानी की आवक बनी हुई है। छोटे बड़े कुल 693 से 40 बांध लबालब हैं, वहीं 442 आंशिक रूप से भरे हुए हैं। सावन के पवित्र महीने में प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर कलश कांवड़ दिखाई दे रहे हैं। शिव भक्त कांवड़िये गंगा जल और अन्य पवित्र नदियों का जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के साथ ही सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी कड़ी में पाली के जोजावर में त्रिवेणी महादेव से शुरू हुई कांवड़ यात्रा आज देवेश्वर धाम में संपन्न हुई। इस दौरान ढोल बाजों की गूंज और महाकाल सवारी आकर्षण का केंद्र रही। समूचे वातावरण में हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास और कारोबारी सुगमता को मजबूत करती है। केंद्र सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगाई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए व्यापक तैयारियां, संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता भी बढ़ी। और राज्य में मानसूनी गतिविधियां फिलहाल धीमी, हालांकि कल से उत्तरी पूर्वी हिस्सों में इनकी बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है विशारद जोशी ने। जिले में नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के तहत जिला परिषद सभागार में हाल ही में जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में लॉटरी के माध्यम से नगर निगम पाली सहित जिले के 10 नगर निकायों के 320 वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए कुल 60, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, ओबीसी के लिए 60 और अनारक्षित वर्ग के लिए 189 वार्ड रिजर्व हुए हैं। इनमें 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में नगर निगम पाली के 65 वार्ड, नगर पालिका सोजत रोड के 25 वार्ड, सोजत सिटी के 40, रानीखुर्द के 20 और

0: मारवाड़ जंक्शन के 25 वार्ड्स में मतदान होगा। इसी प्रकार दूसरे चरण में नगर पालिका बाली के 25, खुड़ाला फालना के 25, सारड़ी के 25, सुमेरपुर के 35 और तखतगढ़ के 25 वार्डों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और आमजन से चुनाव संबंधी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के लिए चुनाव नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा। प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने सहित संशोधन के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जोजावर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में राष्ट्र स्तरीय योग प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस कार्यशाला में नवोदय विद्यालय समिति जयपुर संभाग के तहत आने वाले राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालयों से 18 छात्र और 18 छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें योग की विभिन्न विधियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है। जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। जिला मुख्यालय के बांगड़ स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। समारोह में वीरांगनाओं और 99 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में तिरंगा वितरण, हस्ताक्षर अभियान, देशभक्ति गीत, रंगोली, निबंध प्रतियोगिता और तिरंगा सेल्फी जैसी गतिविधियां आयोजित की गयी। जिला मुख्यालय के प्रमुख चौराहों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी, कैंडल मार्च और स्मृति संध्या का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी में वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान हुए विस्थापन, पीड़ा और संघर्ष की स्मृतियां प्रदर्शित की गयी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सोमेश्वर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। करीब 12 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्निर्माण कराया गया है। कार्यक्रम में पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत सहित बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। स्टेशन को फूलों और रोशनी से सजाया गया तथा लोकार्पण कार्यक्रम का बड़ी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया गया। पशुओं की नस्ल सुधार और संरक्षण के लिए प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म सांडेराव में बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने इसके भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े की 30 प्रजातियों के नस्ल सुधार और संवर्धन का काम किया जाएगा। ये केंद्र करीब 200 बीघा भूमि पर विकसित होगा। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। बालिकाओं को महिला सुरक्षा, अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी से सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। सावन के महीने में जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सोमनाथ मंदिर में महादेव का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। परशुराम महादेव में मेला भरा। लाखोटिया महादेव, रत्नेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और पातालेश्वर महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसी के साथ पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो टेम सर फैसला देवन वाली न्याय व्यवस्था भरोसा और कारोबारी आसानी न मजबूत बनावे है। केंद्र सरकार 4 सालों कम उम्र का बच्चा सारू क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड वाला सगड़ा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन माथे रोक लगाई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सारू तैयारियां, संभावित उम्मीदवारों री हलचल बधी और राज्य में चौमासारी बिरखा फिलहाल मंदी, कालू उत्तराद उगनी हल्का में बढ़ोतरी रा आसार। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो है कि टेम सर फैसलो देवन वाली न्याय व्यवस्था भरोसो बधावे है, कारोबार री आसानी मजबूत करे है और किनी देश का निवेश

0: विकास में बत्तो भरोसेमंद बनावे है। वे नई दिल्ली में 11वां ब्रिक्स लीगल फोरम में बोल रहा है। सीजीआई कहो के मजबूत संस्थान खास तौर असरदार न्याय व्यवस्था माली विकास री नीम हुए है। ब्रिक्स देशारा पर्यटन मंत्रियों की जयपुर में भी मीटिंग में शामिल हुआ परदेसी पावणा आज जयपुर री ऐतिहासिक ठौड़ा रो दौरो किनो। वे आमेर रा किला सिटी पैलेस और हवा महल री खूबसूरती न निरखी और शहर री बेहतरीन वास्तुकला पारंपरिक शिल्प और समुदाय आधारित पर्यटन पहला न बारा माए जानकारी हासिल कीनी। इनो पहली ब्रिक्स देशों ना पर्यटन मंत्री काल जयपुर घोषणा पत्र पास कर और सदस्य देशों बीच सैर सपाटारा हल्का माए सहयोग मजबूत करण मथ जोर तीनों। इनमें सैर सपाटारा हल्का माए एआई काम लेवन लगातार और जिम्मेदार पर्यटन पर्यटन कौशल और क्षमता निर्माण सागे बिना अड़चन सफर रासुबिता मथ खास ध्यान दियो चियो है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत री सदारत माए भी इन मीटिंग माए ब्रिक्स संगठन रा भारत ब्राजील ईरान दक्षिण अफ्रीका यूएई रा पर्यटन मंत्री और चीन इथियोपिया इंडोनेशिया और रूस रा नुमाइंदा दल शामिल थिया। केंद्र सरकार 4 साल री उम्र छोटा बच्चा सारू क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड वाला सगला फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन बनावन और बेचण मथ रोक लगाती नी है। स्वास्थ्य मंत्रालय इन बाबत अधिसूचना जारी की नी है। इस साल जून महीना में आई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में इस्तेमाल सारू 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयां बनावन और बेचण मथ रोक लगाई है। केंद्र सरकार टेलीविजन चैनलों सारू विज्ञापन री 12 मिनट री बत्ती म्याद री हद हटावन री अधिसूचना जारी करती नी है। ओ फैसलो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 माए बदलाव रे गजट माए छापन सागे लागू वे क्यों है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रे मुजब भारत माए टेलीविजन मथे विज्ञापन री म्याद री हद साल 2006 माए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 रा तहत लागू करी ची ही। साल 2006 माए देश माए केवल 62 टेलीविजन चैनल हा जबकि मौजूदा दौर माए आरी तादाद 932 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत लाइसेंस राज रे दौरान उत्पादन में सजा देवन री सोच माए बदलाव कीनो है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 माए श्री मोदी कहो कि ई रिथौड़ अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना रे जरिए उत्पादन में बढ़ावा दियो चाहियो है। श्री मोदी राज री सोच माए बदलाव रो जिक्र कीनो।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था वही आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री कहो कि सरकार विनिर्माण प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था समेत खास 7 हल्का री सप्त धारा मथ ध्यान दे रही है।
1: मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। अब इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश का 309 नगर निकायों में भी वनवाड़ा चुनाव सारू तैयारियां चल रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव जुड़ी हलचल मथ नजर रखन सारू बनाई जाए कंट्रोल रूम रो जायजो ले रहा है और निकाय चुनाव सारू बनाई जाए न्यारा न्यारा प्रकोष्ठ की मीटिंग कर जायजो ले रहा है। चुनाव ड्यूटी में लागोड़ा कर्मचारियों ने सिखावन रो काम ही शुरू फेंक्यो है। चुनाव जुड़िया स्वीप कार्यक्रम का तहत आज श्रीगंगानगर में मतदाता जागरूक

0: जागरूकता रैली निकाली जी जदका चूरू माए मानव श्रृंखला बनाई जी पाली माए लगाई गया स्काउट गाइड शिविर माए मतदाता जागरूकता शपथ दिराई जी निकाय चुनाव राय लांड सा गए संभावित उम्मीदवार रिहल चलबद्ध की है 27 अगस्त तो सरू फेरिया नाम पाना दाखिल करन रा काम सारू जयपुर माए 15 केंद्र बनाई चिया है हर केंद्र माथे 10 वार्डा ना उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सकेला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश परीक्षा AIAPGET रे दौरान जयपुर रा एक सेंटर माथे बिजली री व्यवस्था ठप वे जावन रा वाकया पाछे आ परीक्षा ओजू लेवन रो फैसलो कीनो है ई सेंटर रा 49 उम्मीदवार सारू परीक्षा 1 सितंबर न ओजू ली जावेला ध्यान जोग है कि देश भर माए 200 केंद्र माथे 36,932 उम्मीदवार सारू आज आ परीक्षा ली रीजी राजस्थान पुलिस ऑपरेशन नीलकंठ रातेत बीकानेर माए नशीली चीजों रा तस्करी तस्करी वर्जित करीजी गैर कानूनी संपत्ति ने फ्रीज कर दीनी बीकानेर रा एसपी मृदुल कछावा बतायो कि इन साल अप्रैल और अगस्त महीना ताई 232 कार्रवाई कर 2,852 आरोपिता ने गिरफ्तार करीचिया
1: ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत एक प्रमुख कार्य जो बीकानेर पुलिस द्वारा किया गया है वो 68 एफ की कार्रवाई है जिसमें कि अवैध मादक पदार्थ के जो तस्कर हैं उनकी जो संपत्तियां हैं उनको सीज करने का कार्य जो है वो बीकानेर पुलिस द्वारा किया गया है और आगामी समय में भी इसी प्रकार 68 एफ की और कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की जाएंगी फिलहाल अभी तक हमने 16 इस्तगा से जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सबमिट कर दी है ये संख्या फिलहाल राजस्थान में सबसे ज्यादा है
0: सावन रा महीना माए राज्य माए नैरी नैरी ठोणा कलश कावड़ नजर आ रहा है शिव भक्त कावड़िया गंगा जल और दूजी पवित्र नदियां नो पानी लेर भोलेनाथ रो अभिषेक कर रहा है पाली जिला रा जोजावर माए त्रिवेणी महादेव सरोवरी कावड़ यात्रा आज देवेश्वर धाम माए पूरी भी इन दौरान ढोल नगाड़ा री गूंज और महाकाल सवारी सगड़ा रो ध्यान खींचो और हर हर महादेव रा जयकारा सुनाई दीना राखी रे मौके राखी बुकिंग और खास डाक सेवाओं सारू काल दीतवार ने कई खास डाकघर और उप डाकघर खुला रहेला झालावाड़ बारा बूंदी डीडवाना और उदयपुर समेत कई मुंडना माए खास काउंटर खुलेला बारिश का मौसम में ध्यान रखता थका डाकघर माए खास वाटर प्रूफ राखी लिफाफा और पैकिंग बॉक्स मुहैया कराई चिया है प्रदेश में चौमासारी बिरखा फिलहाल कम पड़ की है हालांकि राज्य रा उगड़ी हल्का माए कठे कठे हल्की बरसात हुई मौसम विभाग रे मुजब काल और राज्य रा उत्तराद उगड़ी हल्का माए बिरखा माए बढ़ोतरी रा आसार है महकमो काल अलवर माना भरतपुर बूंदी दौसा और जयपुर समेत 17 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है आज कई ठोणा मौसम पलट बसा गए तेज बायरो बाजन री संभावना है धौलपुर और करौली माए बिरखा सा गई तेज रफ्तार और हवा चालन रा आसार है हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर चूरू और डीडवाना कुचामन माए गरज चमक सा गए जोरदार बायरो बाजन री संभावना है प्रदेश का कुछ हल्का माए आवता 4-5 दिन ताई मौसम सूखो रमन रा आसार है जल संसाधन विभाग रे मुजब राज्य रा बंधा माए पानी री आमद भय रही है और छोटा मोटा 693 मायू 40 बंधा लबालब भर गया है जबकि 442 थोड़ा घना भरिया है BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 रा महिला युगल सेमीफाइनल माय भारत री त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद्री जोड़ी कंसारो तमगो जीत्यो है आज नई दिल्ली में खेली जा सेमीफाइनल मुकाबला माय भारत री जोड़ी ने चीन री शीर्ष वरीयता वाली ली यू शैंग शू और टेन निंग री जोड़ी 21-18, 13-21, 8-21 हार रो सामनो करनो पड़ियो हनुमानगढ़ में आज मोटा अनाज जुड़ी कार्यशाला रखी जी इमा किसानों ने श्री अन्न री खेती और प्रोसेसिंग री जानकारी दी री जी इस आगे स्वास्थ्य सुरक्षा सारू मोटो अनाज काम लेवन माथे जोर दियो जियो ज्वार बाजरा रागी सावा कोदो और कुटकी ने रोजीना खान पीन माए शामिल करण री पाती कही जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला आ हर महीना प्रसारित

0: प्रसारित किया जावाला इन कार्यक्रम री 137वीं कड़ी फैला इंसारू आप ही 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे राय भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम के जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन रहो। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो तीन सर फैसला देवन वाली न्याय व्यवस्था भरोसा और कारोबारी आसानी ने मजबूत बनावे है। केंद्र सरकार 4 सालों कम उम्र रा बच्चा सारो क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड वाला सगड़ा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन माथे रोक लगाई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सारू तैयारियां संभावित उम्मीदवार आ रही हलचल बढ़ी और राज्य में चौमासारी बिरखा फिलहाल मंदी कालों उत्तराद उगनी हल्का माए बढ़ोतरी रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी इंक्वायरी
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने आशा धवाई का घना घना राम राम, और अश्वनी भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
6: बिल्कुल सुनवाला सगला किसान भाई ने और आपने घना घना राम राम।
5: और अश्वनी भाई देखो कार्यक्रम छे किसान वाणी, अपना काश्तकार भाइयों को, अपना किसान भाइयों को, और ई कार्यक्रम को उद्देश्य भी यही छे कि अपना जी का काश्तकार भाइयों छे, वहां काश्तकार भाई जो भी मेहनत करे छे खेती बाड़ी में, पशुपालन में, वहां ने वहां की मेहनत को पूरो बत्तो फायदो मिले, वे नई से नई तकनीक अपनावे, अबार काई चाल रो छे, कई फसलों ने सुरक्षित राख सका चा, आप कई उत्पादन चोखू ले सका चा, यही बातों ने आप ई कार्यक्रम में वहां के लिए ले रहा चा। आज भी एक छोटी सी जानकारी ले रहा है।
6: बिल्कुल, यानी आज आप बात कर रहा अगस्त का महीना की, ई महीना की, तो ई महीना में आज आप बात कर से कपास की फसल के बारे में।
5: क्योंकि अश्विनी भाई देखो कपास एक नकदी फसल है जी में काश्तकार भाया कम मेहनत में थोड़ी सी सुरक्षा रखता हुआ चोखू उत्पादन ले सके छे।
6: बिल्कुल, और आज आप कपास के बारे में बात कर रहा कि ई महीना में आप कौन कौन सा कार्य कर सका चा, तो सबसे पहले तो आप बात कर रहा निराई गुड़ाई की, यानी खेत में खरपतवार न रहने रह बजा जरूरत हो तो अपना हाथ से या अनुसंचित जो खरपतवार नाशी को प्रयोग भी अपाई के लिए कर सका था। और झटे बात कर आप जल निकासी की, तो देखो कई जिला के मायने बरसात अच्छी हुई थी, लेकिन कई जिला में कौन हो रही, लेकिन जमे अच्छी बरसात हुई है बट लगातार बारिश होगा हमारे खेत में पानी जमा हो जाए, क्योंकि कपास में जल भराव से जड़ा प्रभावित हो सके।
5: और अश्विनी भाई देखो ध्यान देवा की बात यह भी है कि कपास की फसल में जब सुंडी बने छे, टिंडा आवे छे, वो कपास का उत्पादन दिखावे छे, तो ई टाइम वह प्रक्रिया

चाल रही छे तो पौधा में आपकी कपास की जो फसल छे उनमें पूरा पोषक तत्व होनी चाहिए और साथ ही साथ संरक्षण को भी पूरा काम होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी चूक होगी तो ये टाइम फिर नुकसान की संभावना ज्यादा हुए छे। और जो आप निराई गुड़ाई की बात करी रहे छे तो वो थोड़ा दिन पहले अपना काश्तकार भाई कर चुके छे। एक थोड़ी सी बात यह ध्यान रखा कि कोई अगर पौधा छे जहां की जड़ा निकल चुकी छे तो वहां जड़ा पर माटी

0: मत्स्य पालन की आधुनिक विधियां के बारे में। सबसे पहले तो कार्यक्रम में डॉक्टर राजपाल यादव जी आपको खूब खूब स्वागत है। राम राम सा।
1: राम राम सा।
0: जैसा कि वहाँ का जो काश्तकार भाई है वे खेती बाड़ी के साथ साथ मत्स्य पालन में भी यानी कि मछली पालन में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे छे और खासो फायदो ई व्यवसाय से पावे भी छे, तो थोड़ी सी जानकारी आपसे शुरुआत में यही चाहना की तरीका से मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन में करना चाहिए, कई मोटा फायदा छे, कई संभावना छे और कई सावचेतियां रखनी चाहिए।
1: मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं है। राजस्थान राज्य में एक बड़ा भूभाग जो कि नदियों, तालाबों, जलाशयों एवं झरनों के रूप में उपलब्ध है, जहां पर मत्स्य पालन के लिए किसान भाइयों के लिए रोजगार की अपूर्ण संभावनाएं हैं, जहां किसान भाई आधुनिक तकनीकी से अपनी जो आय है उसको डबल कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, अबार आप बताया कि आधुनिक तकनीक को अगर उपयोग करो जावे मत्स्य पालन में मछली पालन के मायने, तो आपकी आमदनी ने भाई लोगा दुगनी कर सके छे। तो यूं तो परंपरागत तरीका से करता ही आया छे, पर नई तकनीका काई काई छे की तरीका से करी जावे छे इका बारे में विस्तार से वहां का भाई लोगा ने बताओ सा।
1: मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक क्या है? मुख्यतः पांच तकनीकियां है, जिसमें पहली है पेन कल्चर, दूसरी केज कल्चर, तीसरी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, चौथी बायोफ्लोक सिस्टम और पांचवी एक्वापोनिक सिस्टम।
0: जी,
1: इनमें पहले पे आपा बात करा कि पेन कल्चर काय हो है। आ एक पेन कल्चर तकनीक है, आ एक महत्वपूर्ण तकनीक है और आ सबसू जो आपा कहो किसान भाई की भाषा में की सस्ती तकनीक है जिन लागत कम आवे। एक मायने जहाँ तालाब हो है या अपना जलाशय बांध हो है, बाका किनारा का क्षेत्र के मायने एक बाड़ू बनावा आपा।
0: जी,
1: बाड़ू बना और बी के मायने मछली पालन करा।
0: जी,
1: किनारा वाला क्षेत्र में जिड़े 5-6 फीट पानी हो है, बी के मायने बाड़ू बनावा, चारों ओर से घेर दिया बी के मायने जहाँ बांस या लकड़ी सू और बी मारा जाल लगा और बी किनारा में लगावा। ईसू का हुआ है कि जो बाड़ू बनावा बी के मायने अपने मछलियां तालाब सू अलग बट जाए, एक अलग एरियो बन जाए, बी के मायने अपनी मछलियां है वह तालाब का पूरा क्षेत्र में न जा पावे और किसान भाई ये जब चावे बी के मायने मछली को बच्चों डाल सके और जब चावे जब बीमा से मछली वापस निकाल सके। और दूसरी चीजा जहाँ बीमारी हो है, पानी हो है, दानो हो है, वे सब चीजा भी इनमें कंट्रोल कर सके। ई पेन कल्चर विधि ने आपा बाड़ा विधि भी कहवा जिसके मायने एक तरह बाड़ू बने। ई के साथ में पेन कल्चर में किसान भाई के जो मछली का दाना की लागत हो है बी के मायने बचत हो है, जो अपना जलाशय हो है तालाब हो है बीसू ही मछलियां ने दानों मिल जाए, पानी लगातार अपना बाड़ा के मायने पेन में आतो रहे और बी के साथ में जो प्राकृतिक जो दानो हुए आहार हुए वो मछलियां मिलते रहे और बीमारियां होवे की दिक्कत होवे या पानी खराब होवे की दिक्कत होवे आ दिक्कत भी के मायने को नहीं होवे।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप या पेन कल्चर तकनीक के बारे में बता रहे थे, तो इका मोटा मोटा जो फायदा छे वे कहीं छे या भी बताओ सा।
1: पेन कल्चर तकनीक में पानी की जो गुणवत्ता होवे वह अच्छी बनी रहे पूरा कल्चर पीरियड के मायने, या आप बात करा पूरा पालन मछली पालन पीरियड में पानी की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे। इसके साथ में मछलियां के मायने बीमारी होवे की जो संभावना होवे वह बहुत कम होवे। इसके साथ में मछली को जो विकास होवे, वजन बढ़े या वी की साइज बढ़े वह भी बहुत जल्दी बढ़े। किसान भाई कम लागत में ज्यादा पैसा कमा सके इसके मायने। इसके साथ में ही मछली जो होवे वो किसान इन हर तरीका से कंट्रोल कर सके इसके मायने, यही का मेन फायदा छे।
0: जी, तो देखो बात करें अब आप पेन कल्चर की, अब केज कल्चर का बारे में भी शुरुआत में आप बताया था भाई पांच विधिया में सु एक विधि छे केज कल्चर विधि, तो इका बारे में विस्तार से मगर मछली पालक जो भाई बहन जो वाने बताओ सा, ताकि वे इको उपयोग करता हुए आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत कर सके।
1: केज कल्चर तकनीक है, इसमें आप पिंजरा विधि भी कहा जी के मायने पिंजरो बनावा आप जो चारों ओर से बंद हो गए, जो पिंजरो हो बी की साइज हो 5 मीटर लंबो, 5 मीटर चौड़ो और 4 मीटर गहरो, जिन आप जहाँ आपने झीला छे तालाब छे या बड़ा जलाशय छे जैकी साल भर जो गहराई है वह 6 मीटर से ज्यादा हुए, बी के मायने ई तकनीकों को वहां पर इस्तेमाल करा और ई तकनीकी के मामले में आप यहाँ की मछलियों को पालन करा जो जल्दी वजन प्राप्त करे और ज्यादा खानो खावे, जिसू आप साल में 2 फसला एक ही मछली की ले सका। इसू किसान भाई एक साल में जहाँ प्राकृतिक विधि से मछली पालन करे तो भी एक ही फसल ले पावे, ई विधि में किसान भाई 2 फसल ले पाओ तो

0: किसान भाई ने दुगनो फायदो है इन विधि के मायने।
1: तो अब आप यहाँ बताओ सर की जहाँ पेन कल्चर विधि का फायदा है वही ही कहीं कोई मोटा फायदा केज कल्चर विधि का भी है?
0: जी हाँ, केज कल्चर का जहाँ फायदा की बात करा तो आपा मछली की देखभाल आसानी से कर सका। जब आपा चावा मछली में कोई बीमारी हो जावे या कोई मछली मर भी जावे तो फिर आपा केज ने ऊपर पानी से निकाल और बीमा से मछली में बाहर में निकाल सका और मछली को बीमारी अगर कोई हो जाओ तो बिल्कुल उपचार भी आसानी से कर सका। इसके मायने मछली की वर्दी जो ग्रोथ आपा करवा वह भी ज्यादा तेज होवे। साथ में अगर आपा बाहर से मछली ने बारह सौ मछली ने दानो डाला या आहार डाला तो वो आसानी से डाल सका। मछली जो है वह पिंजरा में रहे तो बी की जो ग्रोथ है और बारह का जो जहाँ आप कहा परजीवी जानवर हो पानी का वह भी मछली नुकसान कौन पहुंचा पावे।
1: अब जी की तीसरी विधि जिन्हें आप आर ए एस या रिसर्कुलेट एक्वा कल्चर विधि कहना चाह या प्रणाली जिन्हें कहना चाह वह कहीं से कहीं का फायदा चे बताओ सर।
0: आर एस प्रणाली रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जिन्हें आप कहा आ विधि है। एक मायने कायम हुआ कि जब आप मछली पालन करा तो इनमें जगह की और पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़े। जगह की आवश्यकता और पानी की आवश्यकता इसलिए कम पड़े कि ई विधि के मायने आप जहाँ छह महीना अपने कल्चर को टाइम चाले तो इनमें जो एक बार आप तालाब में पानी भरा अपना टैंक में पानी भरा बी पानी ने जैविक विधि सु और भौतिक विधि सु उपचार कर और पाछो टैंक में उपयोग करा
1: दोबारा काम में ले सके।
0: जी जिसमें आपने जहाँ आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो आधा हिस्सा है 60% हिस्सा है भी में पानी की कमी है, तो बड़े भी किसान भाई जो मछली पालन कर सके करबा का इच्छुक है वह इस विधि को उपयोग कर और मछली पालन कर सके जिनमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम हो।
1: और इका मोटा मोटा फायदा कहीं चाहिए बताओ सर।
0: इका मोटा फायदा यह छे कि एक तो इस विधि के मायने जहाँ पर टैंक बनाओ प्लास्टिक को टैंक बनाओ या सीमेंट को टैंक बनाओ तो बिकी लागत कम आवे। दूसरो है कि पानी की लागत कम आवे क्यों आप एक ही बार जो पानी यूज में लेवा बिन पूरा अपना फसल को जो टाइम हो बिन चालू रखा। तीसरी है कि इन दवाई है मछली के लिए या प्रोबायोटिक्स है वाकू उपयोग आप बहुत कम करा या न की बराबर करा। इसके साथ में मछली आप जब चावा जद हार्वेस्ट कर सका छोटो टैंक हो जब चावा जद आप मछली हार्वेस्ट कर सका। इसके साथ में जो जमीन की लागत आवे अपनी जमीन खरीदवा की लागत है या पानी की है वह भी बहुत कम आवे।
1: तो देखो आप इतनी देर से बात कर रहे थे कि आधुनिक मत्स्य पालन की जो विधियां छे वे कौन कौन सी छे। इस बीच में एक मोटो सवाल यह भी आवे छे मछली पालक भाई बहना के पास में कि वे जो मछलियां पाले वहां की प्रजाति जो पालवा योग्य प्रजातियां चाहे मुख्य मुख्य वे कौन सी चाहे ताकि वहां कम मेहनत में जो ज्यादा फायदा दे सके कम समय में फायदा दे सके।
0: आप आधुनिक विधा की बात करें तो आधुनिक विधा का मायना आप वे मछलिया को सिलेक्शन करा किसान भाई वे मछलिया को सिलेक्शन करे जो जल्दी तो बड़े वजन में कम जगह के मायने आप ज्यादा मछली डाल सका और ज्यादा आहार खावे जिसको किसान भाई ने भी ज्यादा लाभ मिले। जी के मायने आप बात करा जहाँ तिलापिया मछली छे पंगास मछली छे जिया की अपनी केटफिशा छे वालगो अट्टू छे सिंगी मछली छे रेनबो ट्राउट छे कई मछलियां छे जकी जल्दी दानो खावे और जल्दी ग्रोथ करे और कम जगह के मायने भी है जिंदा रह सके।
1: एक आपसे यह भी जानना चाहना डॉक्टर साहब भाई शुरुआत में अगर कोई मछली पालन शुरुआत करे व्यवसाय का रूप में तो कितनी लागत की उन्हें जरूरत पड़े जे कि हाँ कितने बजट होना चाहिए जैसे शुरुआत की जा सके जी।
0: आपने किसान भाई जो नया मछली पालन स्टार्ट करना चाहे या आपने आधुनिक तरीका से मछली पालन स्टार्ट कर बचाओ तो वो 5-7 लाख रुपया के मायने मछली पालन स्टार्ट कर सके। 5-7 लाख रुपया की जो लागत आवे वह मछली को जो शुरुआत को जो आपने तालाब बनावा टैंक बनावा है जो भी एरेटर खरीदा मशीना खरीदा मछली को दानों खरीदा सब कहीं भी के मायने आ जावे। इन तकनीक मायने या मछली पालन में आज जो लागत है वह एक बार लागे बी के बाद में आप जहाँ हर साल मछली पालन करा तो बी के मायने जहाँ सिर्फ मछली को बच्चा का और मछली का दाना का पीसा लागे और हर साल किसान भाई 5-7 लाख रुपया लगा और 2-3 लाख रुपया कमा सके। अच्छा
1: काश्तकार भैया डॉक्टर राजपाल यादव सहायक मत्स्य विकास अधिकारी निदेशालय मत्स्य राजस्थान जयपुर आज आपने साथ छे और आपने बहुत ही बेहतर तरीका से बता रहे हैं कि मत्स्य पालन की जो आधुनिक विधियां छे वे कई कई छे की तरीका से सावचेती राखता हुआ मछली पालन कर आर्थिक स्थिति ने मजबूत करी जा सके छे। अब जिया की खूब सारी विधियां के बारे में आप बता चुके हैं अब एक और विधि को नाम सुनवा आवे छे बायोफ्लॉक विधि। तो बायोफ्लॉक विधि या बायोफ्लॉक सिस्टम कहीं छे की तरीका से करो जावे छे और की तरीका से इन्हें अपना काश्तकार भैया मछली पालन कर सके छे उचित तरीका से यह भी बताओ सर।
0: बायोफ्लॉक विधि जो आप बात कर रहे हैं

0: या कि है कि एक मायने जो मछली को अपशिष्ट पदार्थ हो बिना आपा बैक्टीरिया या आपा कहवा की प्रोबायोटिक्स जो हो बाकी सहायता सु जो अपशिष्ट पदार्थ हो बिन वापस आपा मछली का खाना के रूप में परिवर्तन करा और बी ही अपशिष्ट ना मछली का खाना के रूप में वापस उपयोग करा जिसु मछली का जो खाना की लागत हो या मछली पालन करा आपा तो बी के मायने 60% जो लागत हो मछली पालन की बा दाना के मायने जावे तो आपने जो अगर आपा मछली को अपशिष्ट हो बिन वापस यूज करा बैक्टीरिया की सहायता सु तो आपने जो 60% की जो लागत है खाना की वह अपनी बच जावे एक मायने जहाँ बैक्टीरिया हो वे आपा टेंका के मायने डेवलप करा बैक्टीरिया डेवलप करवा के लिए आपा जो आपने किसान भाई अगर ग्राम सब जाने कि गुड़ हो बी को उपयोग करा जो माटी हो आपने खेत की बी को उपयोग करा एक साथ में जिया जो आप अगार मीडिया हो या बैक्टीरिया हो वे पानी के मायने दोनों चीजें के साथ में डेवलप हो जावे और जो मछली को अपशिष्ट हो बिन वापस मछली का खाना के रूप में परिवर्तन कर दे जिसु जो किसान भाई है बाकी लागत कम हो जावे
1: और कोई एक मोटा फायदा है कि बायोफ्लोक सिस्टम से अगर मछली पालन करी हो जावे तो और भी ये मोटा मोटा फायदा है
0: एक मोटा फायदा ये भी है कि मछली जो है वो खानो खावे तो अमोनिया के रूप में वो आपको अपशिष्ट पदार्थ त्यागे तो भी अमोनियन बैक्टीरिया नाइट्रेट में परिवर्तन कर देवे जो कि जो पानी हो भी कमाएने खाद को काम करे जिसु जो मछलियां हो बाकी लिए जो पानी में जो सेवाल हो पलवक हो बाको निर्माण हो जावे
1: तो देखो सा इतनी सारी विधियां के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विधि है एक्वाफोनिक तकनीक जिसे कि मछली पालन कर दोहरों फायदो काश्तकार भैया ले सके छे मछली पालक भाई बहन ले सके छे थोड़ी सी जानकारी मका काश्तकार भैया ने इस विधि के बारे में बताओ सा
0: एक्वाफोनिक विधि है आ खेती के साथ में जहाँ आप हाइड्रोपोनिक की बात करा खेती के साथ में मछली पालन करवा की एक विधि है एक मायने काहे करा कि आप नीचे तो आपने मछली पालन का टैंक हो मछली पालन का टैंक के ऊपर आप काहे करा कि बेड बना देवा पानी के ऊपर तैरता हुआ भी के मायने आप पौधा लगावा और ऊपर आपने पौधा की या सब्जी की खेती हो और नीचे मछली पालन की खेती हो इन जो मछली अपशिष्ट पदार्थ निकाले वे पौधा आपका जो आप कहा न्यूट्रिशन के रूप में या पोषक तत्व के रूप में एब्जॉर्ब कर लेवे और पानी साफ करे और जो मछली दानों खावे जिसको फिल्टर भी होते रहे इस आपने कहा है कि पौधा या आप कहा कि सब्जी है वे भी आप मिलता रहे और मछली पालन से दोहरी आमदनी है अपन मिलती रहे
1: और इनमें की तरह से बचत करी जा सके वह बताओ सर
0: इस विधि के मायने भी आपने कहा है कि जगह की और पानी की आवश्यकता बहुत ही कम हो इन विधि में भी आपने जहाँ पर एक बार टैंक भर ले पानी को बिन 10% पानी आपा चेंज करा या वापस डाला पुराना पानी है बिना आपा या पौधा है बैक्टीरिया है बासू फिल्टर कर और वापस यूज करता रहा इनके साथ में जहाँ किसान भाई है तो पौधा की खेती करे मछली की भी मछली को भी पालन करे तो जी हम किसान भाई है वह घर में खावा के लिए भी बन सब्जी मिल जाए उपयुक्त और मछली का रूप में प्रोटीन युक्त आहार भी बने मिल जावे
1: जी तो डॉक्टर साहब देखो बहुत ही विस्तार से आप बता रहे छो कि मत्स्य पालन की जो आधुनिक विधियां छे वे कुंकुन सी छे काई वहां का मोटा फायदा छे और की कर करी जा सके छे पर जो मछली पालक भाई नया सिरा से या शुरुआत में अगर मछली पालन करवो चाहे छे तो आप काई सुझाव वाने देबो चावला काई सावचेती वाने बरतनी चाहिए और काई कोई अशो ब्लू प्रिंट पहले से तैयार रखनो चाहिए कि उन्हें अपना अच्छे से मछली पालन करी जा सके
0: जो किसान भाई अपना जो नया छे मछली पालन करवो चाह रहे छे वन में अवित करवो चाहूंगो कि वे आपका संबंधित जिला के मायने हर जिला के मायने मत्स्य विभाग को कार्यालय छे वहां के अधिकारियों से संपर्क करे इके अलावा विभाग जे मछली पालन के लिए ट्रेनिंग भी देवे छे इके अलावा जे किसान भाई है तो वे आजकल जे ऑनलाइन जो खूब संसाधन चीजें यहाँ पर बात करा प्लेटफॉर्म पर खूब चीजें उपलब्ध है कि छोटी सी जगह मछली पालन कर अतरों आपा पीसो कमा सका हाँ आपा कमा सका लेकिन बिन समय लागे आपा चाहवा कि आपा पहली साल में ही बहुत ज्यादा मुनाफा कमा
1: रहे
0: वो कौन हो पावे आपन 2-3 साल धैर्य रखनो पड़सी
1: वासावा काश्तकार भाया डॉक्टर राजपाल यादव सहायक मत्स्य विकास अधिकारी निदेशालय मत्स्य राजस्थान जयपुर आज आपने स्टूडियो में आया और आपने बताया मत्स्य पालन की आधुनिक विधा का बारे में की कर करी जा सके चाहे कई सावचेती रखनी चाहिए की तरह से आप रूपरेखा बना और ई व्यवसाय में शुरू कर सको छो इतनी बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी दी बताई डॉक्टर राजपाल यादव जी आपको खूब खूब धन्यवाद सा।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: तो बोल रहा
2: पक्षियों से तो हम

0: एक को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब ये डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: अरे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, रूप में बात भेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक विद्या, डॉक्टर राजपाल यादव जी से बहुत बढ़िया जानकारी दिलाया सर जी, तो क्यों ने धन्यवाद स्वरूप एक गीत सुना दिया।
4: बिल्कुल सर, सगड़ा ही मिले सुनायो गीत।

0: अश्विनी भाई
1: हाँ
0: गुलाबो सपेरा इन पार्टी को गायो गीत आपा सुनया और उम्मीद छे सगला ही सुन वाला श्रोतावान ने काश्तकार भाई ने पसंद आयो होलू और बात आपा करी रह छा भाई आपने किसान वाणी कार्यक्रम में बात आप वही करा जो आपने काश्तकार भाई के लिए फायदेमंद हुए। तो देखो अबार को जो टाइम छे उमें राजस्थान की आप बात करा तो कई जगह बरसात हो रही है, कई जगह बहुत कम भी हो रही है और कई जगह तो यू लाग रही है कि तावड़े हो रही है। तो काश्तकार भाई इस मौसम में देखता हूँ यहाँ हाँ आबाड़ा एक दो दिन में संभावना है कि बरसात हो सके पर आप कह कौन से कहा हालतानी मौसम विभाग यही कह रहे हैं कि हाँ अनुमान लगाया जा रहे हैं। तो सावचेती यह भी राखो सा कि अगर जी जगह आपने लाग रहे हैं भाई यहाँ बरसात कौन हो रही और बाजरा में थोड़ी बहुत सिंचाई करने की जरूरत है तो काश्तकार भाई जरूर शू करे ताकि उत्पादन प्रभावित न हो, बाजरा की जो गुणवत्ता है वह भी प्रभावित न हो। और जिया की कई कई काश्तकार भाई है जहाँ खेत में जल भराव हो रखे हुए क्योंकि माटी ऐसी है मान लो चिकनी है काली माटी का खेत है तो उनमें जो पहली की बरसात है उसे ही जल भराव हो रखे हुए तो उन्हें निकालवा की जरूर जरूरत है क्योंकि जल निकास की व्यवस्था कोनो वेली तो फसल आपकी पीली पड़ जावेली और उसमें उत्पादन भी प्रभावित हो गलो। तो कहबा को मतलब यही है कि बात छोटी छोटी है पर घनी मोटी है ज्यादा ध्यान में रखकर अपना काश्तकार भाया आपकी मेहनत को पूरा फायदो ले सके। और अब स्टूडियो की घड़ी इशारो कर रही है कि आज को जी को कार्यक्रम है किसान वाणी उनको टाइम पूरा होते जा रहे हैं तो दिराओ श्रोता आज्ञा आशा ने
1: और अश्विनी कुमार सिंह ने
0: चालार करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
5: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
3: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
5: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
3: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
5: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने आशा दबाई का घना घना राम राम। अश्विनी भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
4: आशा बहन थाने भी घनो घनो राम राम। और सुनवाला सगला किसान भाई ने अश्विनी शुभ कुमार सिंह को घनो घनो राम राम साहब।
3: और रामा श्यामा के साथ ही देखो आज का खेतीबाड़ी कार्यक्रम में बात थोड़ी सी आप यह करेला कि अपना काश्तकार भाई खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी पूरक व्यवसाय का रूप में करे छे।
4: बिल्कुल करे छे।
3: और कोई व्यवसाय का रूप में अपना आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी बना ले छे। कई भाई लोग अपने घर के लिए भी पशुपालन करे छे। तो चाहे आप पशुपालन घर के लिए करा, चाहे आप डेयरी खोला या व्यवसाय का रूप में इन्हें बड़ा स्तर पर करा या छोटा स्तर पर करा, लेकिन पशुओं का स्वास्थ्य की देखभाल वहां को पूरा पोषण ये मुख्य बिंदु छे। पशुपालन के अंदर पशु को स्वास्थ्य कद चोखू रहे छे जब आप वहां की जो आवास व्यवस्था छे वहां को जो बाड़ो छे उन्हें आप बिल्कुल साफ सुथरो रखा और अशोर उन्हें रखा कि ज्या को आप साफ सुथरा घर में रहवा तो आपने एक अलग ही प्रकार की शांति मिले छे। वही वहां महसूस होना चाहिए कि वे एक साफ सुथरी जगह रह रहे छे। और इस कई तरह की आवाज देखो बरसात छे, बरसात में गीलो ज्यादा हो जाए छे, मच्छर माखी पनपे छे, घाव कोई पशु को हो जाओ छे, संक्रमण फैले छे, तो उनमें भी आपने जरूरत छे कि आप पूरो पशुओं का जो पोषण छे उनको और टीकाकरण को ध्यान रखा।
4: बिल्कुल सही बात बताया। जी आप बदलता मौसम में आपने ध्यान रखा था भी आपने पशुओं को ध्यान रखना भी जरूरी है।
3: बिल्कुल।
4: और जी अभी बात कर रहे हैं बरसात का मौसम में तो आपने कई प्रकार को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे गीले हो जाए बटे आपने सूखा को ध्यान रखना चाहिए और बामा बारिश भी नहीं गिरे इसलिए आपने बाको रख रखाव को भी तरीकों से ध्यान रखना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: और सबसे बड़ी बात है खान पान की। और जैसे आप खान पान की बात कर रहा तो देखो बरसात का मौसम है और गर्मी का मौसम में फर्क बचे क्योंकि गर्मी का मौसम में जो आप खान पान खिलावा जा तो बरसात का माने धीरे धीरे बदलाव हो जाए। लेकिन जो भी आप बदलाव करा वो एक साथ नहीं करना चाहिए, आपने अपने धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए यानी थोड़ा थोड़ा चारों बदलना चाहिए ताकि बिना थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ बिना एक साथ न देवा।
3: बिल्कुल सा। तो बात तो छोटी छोटी जी ये भी पर घनी मोटी जी जाना अपना आप एक सुरक्षित और स्वच्छ पशुपालन कर सका पशुओं को स्वास्थ्य

0: से बढ़िया रंग सका छा। और देखो अब सब कुछ जब बढ़िया रंग सका छा तो क्यों ना कार्यक्रम में भी रोचकता लाबा के लिए, बढ़िया बनाबा के लिए, भाई लोगों को मनोरंजन करावा के लिए, क्योंकि जितना भी भाई लोगों का दूर दराज गांव ढाणी में बैठे हैं, चौपाल में बाता करता कार्यक्रम में सुन रहे थे, तो उम्मीद भी करे थे कि हाँ सब मिल बैठ रहे वाने चौको सो गीत भी सुनवाने मिले।
1: बिल्कुल, और डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा साहब पधार गए थे तो सुनाओ बड़ी सी जानकारी।
0: गीत आप बाद में सुनाओ ना, पहली वाले जानकारी दिला दे।
1: बिल्कुल दिलाओ।
0: कास्टकर माया आज अपने साथ छे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, आप भूतपूर्व आचार्य कीट विज्ञान विभाग कृषि विश्वविद्यालय जोपनेर, और आज आप आया सु बात करेला कृषि रसायन का सुरक्षित उपयोग का बारे में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत छे, राम राम सा।
2: राम राम सा।
0: आप मां कास्टकर माया ने यही बताओ सा कि कई शो कारण छे कि जो कीटनाशी रसायन छे वहां को उपयोग लगातार दिन प्रतिदिन बढ़तो ही जा रहे छे, कई ऐसा कारण रहा मोटा मोटा कि कास्टकर माया है या कीटनाशी रसायनों को उपयोग इतो करनो पड़ रहे छे?
2: देखिए, उत्पादन में बढ़ोतरी अति आवश्यक है, परंतु इसके साथ साथ इसका जो कीटनाशी है उनका अगर हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो उससे हमारे भूमि, जल, वायु, आहार में प्रदूषण बढ़ सकता है। यही नहीं, इसका अगर हम निरंतर या लगातार उपयोग करेंगे तो प्रकृति में जो जैविक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। देखिए, देश में इस समय करीब 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के कीटनाशी जो है वो प्रयोग में प्रतिवर्ष लिए जा रहे हैं, जबकि अगर 1990 में ये करीब 90,000 टन कीटनाशी का उपयोग होता था, जो आज बढ़कर के करीब 3 गुना अधिक हो गया है या करीब करीब 3 लाख टन के बराबर हो गया।
0: जी तो डॉक्टर साहब, अब आप यह बताओ सा कि जो माँ का कास्टकर भाया उत्पादन बढ़ावा के ताई या आप कह सकते हैं भाई खुद का निजी स्वार्थ के ताई भी या कीटनाशी रसायन को उपयोग ज्यादा करे छे, तो आपनी धरा जो छे यानी खेत की जो जमी छे उनके ऊपर इको ऐसा काई प्रभाव पड़े छे कि आगे चाल रहे धीरे धीरे ये बहुत ही विनाश की तरफ एक तरह से कास्टकार भाई ने ले जा रहे छे कि यहाँ धरती पर काई फर्क पड़ रहे छे और उत्पादन और मानव स्वास्थ्य पर भी काई काई फर्क पड़ रहे छे।
2: क्योंकि कीटनाशियों का जब उपयोग किया जाता है तो उस पर जो है फसलों पर हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे सब्जी हो या हमारे फल हो, उस पर जो है अवशेष जो है उसके कुछ रह जाते हैं, यानी उसकी कुछ मात्रा रह जाती है
0: जी।
2: वह हानिकारक हो सकती है अगर वो एक सीमा में ना हो तो। अब सीमा जो है वो उसको हम जो है सहनशीलता स्तर या सीमा कह सकते हैं या निरापद सीमा भी कहते हैं, जिसका साधारण सा मतलब है कि जो कीटनाशी पदार्थ है उसमें जो विषैले पदार्थ है उसके अधिक से अधिक कितनी मात्रा जो वो रहे फसल के अंदर या खाने की चीज में, जिससे कि मानव शरीर पर उसका कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। और ये जो है सीमा हमने निश्चित की हुई है, ये अलग अलग फसलों के लिए, अलग अलग जो है सब्जियों के लिए निर्धारित की हुई है, बहुत अनुसंधान इस पर किया गया है और उसके बाद एक निश्चित सीमा हमने जो है वो निर्धारित कर रखी है कि उससे ज्यादा जो है हम उस सीमा से ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो जो है हमारे स्वास्थ्य पर जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, कई बीमारियां, जटिल बीमारियों के आने की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए जो है ये जो निरापद सीमा है इसका ध्यान हमें रखना बहुत आवश्यक है।
0: जी तो डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतर तरीका से आप कास्टकार भाई ने समझा रहे छो। और जी हाँ, की कई बार फसलों ने कीट बीमारियों से बचावा के लिए या उत्पादन बढ़ावा के लिए जो कास्टकार भाई कीटनाशी रसायन को उपयोग कर रहे छे, तो आपका माध्यम से अब कार्यक्रम के जरिए यह जान दो चावल ना कि मानव स्वास्थ्य पर इको विपरीत प्रभाव न पड़े, कोई तरह को नुकसान मानव स्वास्थ्य में न हो, ताई कुन कुन सी सावचेतियां भाई तुड़ाई करवा के टाइम या कीटनाशी रसायन को जो छिड़काव आप करा टाइम का ऐसो तरीको आप ध्यान में लेवा या किसी ऐसी मोटी बातों को कास्टकार भाई ध्यान रखे कि वहां को काम भी हो जावे और इसी साथ साथ ही आपा ये विषैला जहर से एक तरह से बच भी सका या फिर इसका प्रभाव ने बहुत कम कर सका।
2: देखिए, हमारे जो अनुसंधान अब तक हुए हैं वो ये बताते हैं कि छिड़काव के कितने दिनों बाद जो है हम फसल, चाहे वो फल की हो या सब्जी की हो, उसको हम तोड़ करके और बाजार में लाएं या अपने काम में लें, उसके लिए काफी अनुसंधान हुए हैं। और इसका सीधा सा जो अभिप्राय है, जो मतलब है वो ये है कि अवशेष जो है वो कम से कम जो है वो उस खाद्य पदार्थ में रहे ताकि

0: हमारे मानव शरीर पर उसका कोई ज्यादा नुकसान ना हो। और इसके लिए जो है एक प्रतीक्षा काल जो है वो रखा गया है, एक प्रतीक्षा अवधि रखी गई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जब हमने कीटनाशी का छिड़काव किया है अंतिम बार, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक बार छिड़काव करना पड़ता है, कई बार फसल पर दो बार भी छिड़काव करना पड़ता है, तो जो अंतिम बार जो छिड़काव किया है उसके करने उस छिड़काव के बाद हमें फसल काटने में या तोड़ने में, सब्जी है या जो हमारा फल है उसको तोड़ने में कम से कम कितना समय जो दिया जाए, ताकि जो है वो विषैला पदार्थ जो हमने उसके ऊपर छिड़का हुआ है वो एक उस निरापद सीमा या सहनशीलता सीमा के अंदर आ जाए, ताकि जो है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर सहनशीलता सीमा में रहेगा तो हमारे शरीर पर, मानव शरीर पर या खाने वाले के शरीर पर कम से कम असर होने की संभावना रहती है। अब जैसे मैं आप कुछ उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमने भिंडी की फसल बोई हुई है और उस पर अगर हमने मेलाथियोन का छिड़काव हमने किया हुआ है तो जो है, या हमने क्विनालफॉस दूसरी एक दवाई है उसका अगर हमने छिड़काव किया हुआ है तो तुड़ाई जो है वो एक दिन बाद में की जा सकती है। तो एक दिन के बाद जो है उसके अवशेष जो है वो सहनशीलता के सीमा में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर बैंगन की फसल है और उसमें डाइमिथोएट का छिड़काव हमने किया हुआ है तो फिर हमें कम से कम 7 दिन तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही तुड़ाई करें। इसी के साथ अगर उस पर भी हमने क्विनालफॉस का छिड़काव किया हुआ है तो जो है हमें कम से कम 5 दिन के बाद ही उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम टमाटर की फसल को लें तो उसमें जो है मेलाथियोन का अगर छिड़काव हमने किया है तो 3 दिन के बाद हम तोड़ सकते हैं। ऐसी फेट दूसरा कीटनाशी है उसका अगर हमने छिड़काव किया है तो हमें 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। अब कुछ नई दवाइयां आई हैं जिसमें इमिडाक्लोपिड है, जो अगर छिड़काव उसका हमने किया हुआ है तो 2 दिन के बाद हम उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। जहां तक धनिया का सवाल है, उसमें हम डाइमिथोएट का हम छिड़काव करा हुआ है तो, और हम बीज के रूप में अगर उसका हम धनिया ले रहे हैं तो हमें फिर कोई प्रतीक्षा काल नहीं है, हम उसको तोड़ने 0 दिन के बाद या हाथ के हाथ तोड़ करके रख सकते हैं उसको, क्योंकि वो तो बाद में काम आएगा और उसकी निरापद सीमा आ सकती है। परंतु अगर हमने पत्ता गोभी की वो ली हुई है और उसमें क्विनालफॉस का छिड़काव किया हुआ है तो हमें 8 दिन का इंतजार आवश्यक हो जाता है। खीरा है, खाने के काम में आता है, सलाद के रूप में काम में आता है। इसमें अगर इसके कीटों की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोपिड अगर दवाई हमने रखी हुई है, काम में ली हुई है तो हमें 3 दिन के बाद जो है वो तोड़नी है। परंतु 3 दिन कौन से, दूसरे छिड़काव के बाद, क्योंकि इसमें दो छिड़काव करीब करीब जो है वो आवश्यक होते हैं, इसलिए दूसरे छिड़काव के 3 दिन बाद हम इसको खाने में काम में ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब बहुत ही बेहतर तरीका से आप समझा रहे हो। अब जो इतनी सावचेत है आप बताया, यानी सबने ध्यान में रखते हैं, अभी अगर कोई काश्तकार भाई कई बार दिना में चूक हो जावे या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जावे कि उन्हें काम में लेनो ही छे, तो और सावचेतियां रखता रखता भी कई बार कोई छोटी मोटी गलती हो जावे छे, तो काश्तकार भाई ऐसा कई लक्षण वाका शरीर पे, मानव शरीर पे दिखाई दे रहे छे कि वाने पहचान देखियो जा सके भाई हाँ ये जो कीटनाशी रसायन जो छिड़काव करे हुए तो वो सुरक्षित कोने चो, असुरक्षित तरीका से हुए और उनको जो परिणाम छे वो मानव शरीर पर दिखाई दे रहे छे, तो लक्षण कौन कौन सा छे मोटा तौर पर या बताओ सर।
0: देखिए जो अनुसंधान इस दिशा में किए गए हैं उसमें विशेष तौर से जो है इस ये जो कीटनाशी का जो जहर है उससे जी मिचलाना एक लक्षण ये हो सकता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, नाक से खून भी आ सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, त्वचा पर छोटे छोटे जो है वो चकत्ते बन सकते हैं, और अगर लगातार ज्यादा उपयोग हुआ है और ज्यादा संपर्क में आया है तो फिर हृदय रोग भी हो सकते हैं, श्वास रोग से पीड़ित हो सकता है, और अंत में जो है वो कैंसर जो है जो लाइलाज बीमारी अभी तक है वो भी जो है खास तौर से त्वचा के ऊपर जो है वो कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इसका सुरक्षित उपयोग ही वो जो है वो अच्छा रहता है
1: जी। तो सर अब आप ये बताओ सर कि अब क्योंकि जरूरत भी चाहिए कि

0: संख्या अत्री बढ़ रही है तो खाद्यान्न भी बढ़ावो जरूरी है। ई तई कई बार काश्तकार भाया कि ये हानिकारक है फिर भी इको उपयोग कर ही लेवे छे। पर कोई भी चीज को एक तो आप निश्चित सीमा में ही प्रयोग करा और दूसरों बात कुछ एक सावधानियां शायद राखा दुष्प्रभाव ने कम करो जा सके छे। तो आपसे जानबो चाहे ना कि कीटनाशी पदार्थ जो भी छिड़काव बुरकाव के लिए बीमारियों की रोकथाम के लिए फसलों पर काश्तकार भया लेवे खरीदे उ टाइम भी का ऐसी कुछ सावधानियां या कोई बातों को ध्यान रखकर काफी हद तक इस चीज से बचो जा सके।
1: देखिए जब भी हम कीटनाशियों का छिड़काव करते हैं तो सबसे पहले हमारा सुझाव जो वो ये रहता है कि एक तो अंधाधुंध नहीं करें,
0: बिल्कुल
1: होड़ी होड़ में जो है एक दूसरा छिड़क रहे हैं हम छिड़कें या जब तक आवश्यकता ना हो जब तक ना छिड़कें। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन कीटनाशी जब जरूरत हो तो ही खरीदना है
0: जी।
1: दूसरा जो है जो सिफारिश की गई है जिन कीटनाशियों की उन्हीं का ही उपयोग करें, उन्हीं को काम में लेवें, कोई दूसरी तरह के कीटनाशी जो है वो इस्तेमाल में ना लिए जाए। उसके अलावा जो है अच्छी कंपनी का जो है वो भी कीटनाशी उपयोग में लिए जाए, अन्यथा जो है आपका पैसा जो है वो बेकार जा सकता है अगर हम किसी घटिया उत्पाद अगर हम लेकर के आएंगे तो
0: जी।
1: और जब भी हम ये खरीदते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उस पर जो एक लेबल लगा होता है कि ये कब बना है और इसकी जो है अंतिम तारीख जो है वो क्या हो सकती है जिसके तक वो उपयोग में लिया जाए उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि दुकानदार कई बार जो है वो अपना सामान बेचने के लिए जो है वो पुराना स्टॉक जो है वो दे देता है। और उससे बिल जरूर लेना चाहिए, पक्का बिल, क्योंकि जो है कोई भी जो है अगर आगे किसी भी तरह का कोई परेशानी हो कानूनी रूप से अगर लड़ना भी पड़े तो ये पक्का बिल जो है भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। और जब भी ये खरीद के लाएं तो किसी खाने की चीज के साथ जो है वो बिल्कुल भी इसको साथ में ना रखें, क्योंकि उससे हो सकता है कि कोई विषैला खाने के पदार्थ में चला जाए किसी वजह से और हमें नुकसान हो जाए।
0: तो डॉक्टर साहब देखो जब कीटनाशी आप ले आया तो अब जाहिर सी बात है कि सावधानियां रखते हुए सही को छिड़काव बुरकाव तो करेला। तो मोटा तौर पर जब कीटनाशी को छिड़काव या बुरकाव फसल पर करो जावे उन टाइम का जो काश्तकार भाया है वे कौन कौन सी मोटी बातों को ध्यान रखे कि वहां को काम भी हो जावे और वहां कोई तरह को नुकसान भी ना हो।
1: देखिए कीटनाशी उपयोग में जो है जब हमने करना है तो उस समय जो है जो हमारे फल हैं या सब्जी हैं जो तोड़ने लायक हैं उनको हम पहले तोड़ लें
0: जी।
1: ये जो है आगे ये ध्यान रख करके छिड़काव किया जाए कि भाई अब एक हफ्ते जो है हमें सब्जी या फल नहीं तोड़ना है
0: जी।
1: फिर जो है कीटनाशी छिड़काव के लिए जो पंप जाइएगा तो उस पंप की अच्छी तरह से उसके नोजल की अच्छी तरह से जाँच कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें जो है किसी तरह की परेशानी उससे हो जब छिड़काव हमने करना हो। एक दिन में कितनी दवा लगनी है उसका भी एक अंदाजा लगा करके अनुमान लगा करके उतनी ही दवाई साथ में ले जाए, ज्यादा दवाई साथ में ले जाए नहीं, क्योंकि कोई वो भी नुकसान हो सकता है किसी दूसरे के ये हाथ लग जाए और उसका गलत उपयोग कर ले और अपने शरीर को या अपने जीवन को खतरे में डाल ले। साथ ही साथ जो है जो दवा छिड़कने वाला है हमारे किसान भाई जो है ये जो भी दवाई छिड़क रहे हैं उनके शरीर को किसी तरह का घाव नहीं होना चाहिए, खुला घाव, अगर घाव पहली बात तो होना नहीं चाहिए, है तो वो ढका हुआ रहना चाहिए, क्योंकि इसके ये दवाई उसके अगर घाव पर गिरेगी तो उसके शरीर में प्रवेश करके वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है।
0: और ऐसी कोई खास मोटी बात जो कि कीटनाशी दवा काश्तकार भाई जब छिड़के या उन्हें खरीद लिया हुए तो उन टाइम ऐसी कोई विशेष बात या ऐसी कोई सलाह आप जो काश्तकार भाई ने कहवो चाहो जो कि जिसमें आपको दोनों ही काम हो जावे कि आपने जो खेत की धरज है उनको स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, मानव स्वास्थ्य भी बेहतर रहे और आपने उत्पादन भी चोखा मिल जावे।
1: देखिए जब भी कीटनाशियों का हम छिड़काव या बुरकाव करते हैं तो हमारे हाथों में दस्ताने जरूर होने चाहिए
0: जी।
1: खुले हाथ से ये जो है इसका छिड़काव ना करें, उससे बचें। दूसरा जो है जिसमें छिड़काव हो उसमें कोई बीड़ी सिगरेट या कोई और कोई खाने पीने का सामान जो है वो साथ में नहीं होना चाहिए और वो हमारे को इन चीजों को इनसे बचना चाहिए। और आंखों पर चश्मा अवश्य लगाएं क्योंकि कुछ बूंदे उछल करके जो है या वो जो है अगर कोई डस्ट के रूप में है चूर्ण के रूप में तो हमारी आंखों में गिर के हमारी आंखों में नुकसान पहुंचा सकती है। और हवा की तरफ जो हवा चल रही है उस तरफ खड़े होकर के ना कभी भी करें इसको।

0: क्योंकि इससे जो है वो हमारे ऊपर नहीं गिर सकता है उसका छिड़काव जो है। और जब हम छिड़काव कर ले, जहां से हमने दवाई ली थी, जिस डिब्बों से हमने दवाई ली थी और वो खाली हो गए हैं, तो उन डिब्बों को जो है वो प्रयोग, जब उसका उपयोग पूरा हो जाए तो उसको हमें जमीन में गाड़ देनी चाहिए, उसको किसी दूसरे काम में पानी लेने के लिए या कहीं पीने के लिए उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो जहरीला है
1: जी।
0: और कभी भी जो नोजल कई बार बंद हो जाता है, उसको हमें कभी मुंह से नहीं खोलना है, वो जो है पानी में धोए या जो है कोई छोटे सुई की मदद से उसको खोल लें, पर मुंह से सीधा कभी भी उसकी सफाई नहीं करनी चाहिए। और जब भी घोल बनाए तो हमें किसी लकड़ी का या किसी लोहे की छड़ी का इस्तेमाल करके उस घोल को मिलाने में काम में लिया जाए, कभी सीधे हाथ से न मिले, क्योंकि हमारे जो रोम कूप है उनके माध्यम से कीट मशीन हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है
1: जी। वासावा काश्तकार डॉक्टर अशोक शर्मा, भूतपूर्व आचार्य, कीट विज्ञान विभाग, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, आज आपने स्टूडियो में आया और आपने बताया कि कृषि रसायन को सुरक्षित प्रयोग मगर जो काश्तकार भाई है वे किन तरीका से कर सके जे, कौन कौन सी खास मोटी बातें से जाको ध्यान में रखकर या कीटनाशी रसायनों को उपयोग करना चाहिए। इतनी बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी दे बताई डॉक्टर साहब, आपको खूब खूब धन्यवाद सर।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम आईडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक, CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम आईडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
5: कृषि रसायनों का सुरक्षित उपयोग डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी से बहुत बढ़िया जानकारी दिलाया सर जी।
1: जी
5: और देखो आज जानकारी सुखी सुखी को ने सुनाओ, एक प्यारो सुनो गीत।
1: बिल्कुल सुनाओ साहब।

0: अश्विनी भाई सरस्वती देवी दानड़ा का गाया ये गीत चिरबी के साथ ही अब स्टूडियो की घड़ी इशारों कर रही है कि आज को जी को कार्यक्रम चे खेती बाड़ियों को टाइम पूरा होते जा रहे हैं। तो श्रोतावा दिराओ आगे आशा धाबाई ने
1: और अश्विनी कुमार ने
0: चालान करा राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। अब समय हो चला है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हमदर्द से, आइए सुनते हैं।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: अभी आपने सुना फिल्म एक विलन से एक प्यारा सा गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म टू स्टेट से एक गीत जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल लिखे हैं अमित भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनते हैं।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: अभी आपने सुना फिल्म टू स्टेट्स का गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म जिस्म से केके की आवाज में एक प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं।

अभी आपने सुन रहे थे फिल्म जिस्म का गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म एमएस धोनी से पलक मुच्छल की आवाज में एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म एमएस धोनी से गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म रांझना से जावेद अली की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म रांझना का गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म मेट्रो से सोहेल की आवाज में प्रीतम के संगीत के साथ ये गीत। आइए सुनते हैं।

8:30 होने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। स्पोर्ट्स।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग।

साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैंप के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। त्रिशा गायत्री सेमीफाइनल हारी, विश्व चैंपियनशिप में पहला कांस्य पदक अपने नाम किया। हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने रजत, तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक जीता। रुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे, श्रीलंका के रुमेश ने जीता खिताब। कोलंबो में कल भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा और विशाखापट्टनम में कल भारत की मेजबानी में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का शानदार सफर हार के साथ खत्म हुआ। हालांकि भारतीय जोड़ी ने विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम जीत लिया, लेकिन चीन की जोड़ी ने वापसी करते हुए अगले दो गेम हासिल कर 1 घंटे 11 मिनट में 18-21, 18-21, 21-13, 21-8 से जीत दर्ज की। चीन की जोड़ी के खिलाफ पिछले 7 मुकाबलों में त्रिशा और गायत्री को 6 बार हार मिली थी। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक शुरुआत की और 7-2 की बढ़त बना ली। लियू और तान ने लगातार 6 अंक लेकर वापसी की और ब्रेक तक 11-7 से आगे हो गई। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया और स्कोर 12-12 से बराबर कर दिया। स्कोर 18-18 होने के बाद त्रिशा ने एक शानदार शॉट लगाया और भारत 19-18 से आगे हो गया। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने लगातार 2 अंक लेकर पहला गेम 21-18 से जीत लिया। दूसरे गेम में चीन की जोड़ी ने 3-0 की बढ़त के साथ शुरुआत की। भारत ने वापसी करते हुए स्कोर 10-10 से बराबर किया और कुछ समय के लिए बढ़त भी बनाई, लेकिन इसके बाद लियू और तान ने भारतीय खिलाड़ियों की गलतियों का फायदा उठाते हुए चीन ने 17-12 और फिर 19-12 की बढ़त बना ली। चीन की जोड़ी ने दूसरा गेम 21-13 से जीतकर मुकाबला निर्णायक तीसरे गेम में पहुंचा दिया। तीसरे गेम की शुरुआत में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन इसके बाद चीन की जोड़ी ने लगातार अंक जुटाए और 17-7 की बढ़त बना ली। अंत में लियू और तान ने क्रॉस कोर्ट शॉट के साथ मुकाबला खत्म किया और तीसरा गेम 21-8 से जीत लिया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने महिला डबल्स में आखिरी बार विश्व चैंपियनशिप का पदक 2011 में जीता था। तब ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने लंदन में कांस्य पदक हासिल किया था। चलते हैं हॉकी के कोर्ट की ओर। एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से वैगनर हॉकी स्टेडियम में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक तीसरा क्वार्टर का मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीम बराबरी पर है और अभी स्कोर जो है वो 0-0 है। कोई भी टीम अब तक गोल नहीं कर सकी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं शक्ति। क्या कुछ प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक?
2: अगर प्रशांत बात की जाए अब तक के भारत की प्रदर्शन की, 1975 के बाद पदक की आस में हरमनप्रीत की आर्मी उतर चुकी है मैदान पे। क्या शानदार जीत इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में जो दर्ज की थी, उसके बुलंद हौसले शायद आज भी दिख रहे हैं। टफ फाइट देते हुए 4 पेनल्टी कॉर्नर अब तक नीदरलैंड्स को मिले हैं, जिसमें से भारतीय मजबूत डिफेंस के आगे टीम लगभग लाचार नजर आई है और कोई गोल नहीं कर सकी है। हालांकि भारत को उम्मीद होगी कि आने वाले 2 क्वार्टर में कुछ और अटैक किए जाएं। और अगर पहले राउंड की बात कर ली जाए तो 3 मैच में भारत ने 2 में जीत दर्ज की थी और 1 में उसको हार का सामना करना पड़ा था। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने वेल्स और पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन जीत दर्ज की है
0: जी। और इस मैच में जुगराज सिंह और अभिषेक और राजिंदर ने जो मुकाबला था, जिससे पहले नीदरलैंड्स में जो भारत जीती थी, जो हराया था मुकाबला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि शक्ति, भारत का मुकाबला जो है पुरुष वर्ग की बात की जाए तो अच्छा रहा है, लेकिन कल महिला वर्ग में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। महिला हॉकी विश्व कप में कल नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 2-0 से हराया। वैगनर स्टेडियम में दूसरे राउंड के पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम पूरी तरह से हावी नजर आई और उन्होंने भारतीय टीम को

0: सिखाने का कोई मौका नहीं दिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: मैच की शुरुआत से ही नीदरलैंड्स की टीम भारत के डिफेंस पर हावी नजर आई। नीदरलैंड्स को मैच के तीसरे ही मिनट में सफलता मिली। पेनल्टी कॉर्नर पर मिले गोल करने के मौके को यिब्बी जानसेन ने बखूबी भुनाया और शानदार गोल दागा। नीदरलैंड्स ने इसके बाद भी भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में भी गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम को पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन दीपिका इसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी। पहले हाफ के अंत तक नीदरलैंड्स की टीम 1-0 की बढ़त बनाए रखने में सफल रही। हालांकि भारतीय टीम के डिफेंस ने इस दौरान नीदरलैंड्स को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। मैच के 30वें मिनट में सविता ने शानदार बचाव भी किया। तीसरे क्वार्टर के 2 मिनट के खेल के बाद ही नीदरलैंड्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय डिफेंस बचाव करने में सफल रहा। मैच के 38वें मिनट में नीदरलैंड्स ने अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर पर मिले मौके को फ्रेडरिके माटला भुनाने में सफल रही और उन्होंने शानदार गोल दागा। 2-0 की बढ़त हासिल करने के बावजूद नीदरलैंड्स ने लगातार अटैक जारी रखा और भारतीय टीम को मैच में वापसी करने का मौका नहीं दिया। चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन वो नीदरलैंड्स के डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे। इस हार के साथ ही भारतीय टीम की राह मुश्किल हो गई है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात कुश्ती पर। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 3 और पदक जोड़े। चैंपियनशिप के आखिरी दिन टीम ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: मानसी लाथर ने प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। 68 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चीन की चेन लिंग सोंग से मानसी को डिफेंसिव बाउट के जरिए 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। तन्वी गुंडेश मकदुम ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा की एग्निया क्राकोव्स्का को 10-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं कोमल ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में हंगरी की एडा बालास को 5-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय महिला कुश्ती की नई सनसनी काजल ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते थे। 18 वर्षीय काजल भोचक ने 76 किलोग्राम चैंपियनशिप बाउट में हिस्सा लिया। उन्होंने चीन की झिंगरू सून के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-0 से मुकाबले को अपने नाम कर खिताब जीता। तनु शर्मा और सविता ने प्रतियोगिता के अलग अलग वर्ग में रजत पदक हासिल किया। 72 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में तनु को जापान की चिसातो योशिदा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 62 किलोग्राम भार वर्ग में सविता को जापान की सफुरा ओनिशी से 2-12 से हार झेलनी पड़ी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस बीच रजत पदक विजेता तनु शर्मा के पिता ने इसे गर्व का क्षण बताया।
3: उसका सपना यही था भोपाल के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीते। उससे थोड़ा सा इसको हौसला मिला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में नागालैंड में ब्रॉन्ज मेडल आया था। चेन्नई के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड मेडल आया, तब तो इसको पंख मिल गए। और घर परिवार का यही सपना था कि विदेश में खेल के आए, इंटरनेशनल खेल के आए। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी, इसमें बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है, इसलिए हमें अपनी बेटी पर गर्व है।
0: और श्रोताओं को बता दें कि इससे पहले काजल ने 2024 में 69 किलोग्राम वर्ग के अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था और 2025 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के 72 किलोग्राम कैटेगरी में वो जीत चुकी है। काजल ने इस साल के शुरुआत में अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप और बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और अब बात डायमंड लीग की। लुसाने डायमंड लीग में भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना बेस्ट थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश तरंगा ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया। वहीं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।

0: और अब चलते हैं क्रिकेट के कोर्ट मैदान की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट क्रिकेट मुकाबला कल से कोलंबो के सिंगली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। भारत ने पहले टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 165 रन से हराया था। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: भारत ने पहले टेस्ट मैच में तीनों डिपार्टमेंट में बेहतरीन

0: प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की लाजवाब पारी खेली थी, जबकि केएल राहुल और ध्रुव जुरेल भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हुए थे। दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 66 रन की दमदार पारी खेली थी। हालांकि दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल से भी टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वहीं गेंदबाजी में मानस सुधार ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट अपने नाम किया था। रविंद्र जडेजा भी गेंद से किफायती साबित हुए थे। फील्डिंग में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई रन बचाए और कैचेस भी लिए। वहीं दूसरी ओर मेजबान श्रीलंका कोलंबो में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। गोल टेस्ट की दोनों ही पारियों में श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम भारतीय स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आया था। कुशल मेंडिस और दिनेश चांदीमल के दूसरे टेस्ट से बाहर होने से टीम को दोहरा झटका लगा है। गोल टेस्ट की दोनों ही पारियों में दमदार प्रदर्शन करने वाले सोना दिनोशा से टीम को इस मुकाबले में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं कप्तान धनंजय डी सिल्वा को भी बल्ले से अहम योगदान देना होगा। गेंदबाजी में प्रभात जयसूर्या अच्छी लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने कुल 7 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं तेज गेंदबाजी में असीथा फर्नांडो असरदार साबित हुए थे। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 47 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं श्रीलंका ने 7 मैच जीते हैं, जबकि 17 मुकाबलों का अंत ड्रॉ के रूप में हुआ है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: इस बीच भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने मुकाबले से पहले आज क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
2: We want to work extremely hard, not only for one or two days, but extremely hard for 5 days to win a test match. And that is exactly what we did in the last test match. That is why it was very, very pleasing for us that we worked extremely hard. We did the right things right in test cricket. Our guys got in, make those big runs. We had partnerships. We batted first. We batted for 4.5 sessions, put big runs on the board. That is what the key is in these subcontinent conditions. If you bat first, you try and bat big so that you can control the test match from there. And then we had wickets from our seamers. We had wickets from our spinners as well. So I'm not going to say that it was perfect test match, but that is how we want to see test cricket going forward as well, so that teams have to work extremely hard to win a test match over a course of 5 days.
1: शक्ति, जब से कप्तानी मिली है शुभमन गिल को, लगातार भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले हमने इंग्लैंड में देखा कि सीरीज को ड्रॉ किया था और अब पहला मुकाबला भी श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हराना कोई आसान बात नहीं है। लगातार शुभमन गिल बल्ले से और अपनी कप्तानी से अच्छा एक इतिहास रच रहे हैं और अपना एक नाम बना रहे हैं। क्या कुछ नया मौका होगा उनके पास इस श्रृंखला में? अब और
3: जी प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर मुकाबले में एक नया रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के इस प्रिंस की नजरों में होता है। ऐसे ही कई रिकॉर्ड जब कल भारतीय टीम उतरेगी तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा गिल के पास कि वो 5 शतक लगा चुके हैं WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में। कल वो 6 शतक लगाते ही इस पूरे साइकिल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी वो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के साथ 5-5 शतकों की बराबरी पर है और 26 रन जैसे ही अपने बल्ले से शुभमन गिल निकालेंगे, 9 मैचों में तकरीबन 70 की औसत के साथ ये खिलाड़ी अपने इस साइकिल में 1000 रन पूरे कर लेगा।
1: और शक्ति, इस बीच लगातार टेस्ट मैच जो है अलग अलग टीमों का भी खेला जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर, भारत और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का भी मुकाबला खेला जा रहा है, क्या कुछ रहा आज का हाल?
3: जी बिल्कुल, एक मुकाबला जहां बांग्लादेश जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ा है पहले मैच में, लेकिन आज कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क का कहर देखने को मिला बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर और बांग्लादेश की पूरी टीम 64 रन पर सिमट गई, जिसमें मिचेल स्टार्क ने 35 रन देकर शानदार 6 विकेट झटके और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 165 रन बनाते हुए 101 रन की बढ़त हासिल कर ली है। और इस बीच मिचेल स्टार्क जो है WTC साइकिल में 56 मैचों में 108 पारियों में 230 विकेट हासिल कर चुके हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति इस जानकारी के लिए। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल होंगे। इसका उद्देश्य खेल के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप इस पर अपने सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोर

0: गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए

0: लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं
2: का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
3: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ. असुनिया भानमधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोलमाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारूगोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की

0: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस रायन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रूपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रूपये की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केवंझर, मयूरभंज, कलाहंडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केवंझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की तेजा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंगशू और टैंग निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म युवा से, आवाजें मधुश्री और ए आर रहमान की थी। गीत के बोल महबूब के और संगीत ए आर रहमान का।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेलुलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से, आवाज विशाल मिश्रा की थी, गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा के ही थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म रंग दे बसंती से, आवाज ए आर रहमान और नरेश अय्यर की थी। गीत के बोल प्रसून जोशी के और संगीत ए आर रहमान का।
1: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता,
2: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
1: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
2: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
2: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग

0: एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडीकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता, एक गीत आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से, आवाजें अरिजीत सिंह और शाह तिरुपति की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म साथिया से, आवाजें के कुणाल और प्रवीण मनी की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चे के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: नमस्कार।
1: तुम काला बाजार किसके लिए करते थे? रघुवीर के लिए।
2: रघुवीर के लिए?
1: जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता। योर वर्शिप, आज तक जो कानून को दगा देता रहा अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी?
0: ये आवाज फिल्म काला बाजार में उस मशहूर अदाकार की है जिसे दुनिया जानती है किशोर साहू के नाम से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर।

गुजरे दौर के सिनेमा के चहेते दर्शकों के लिए किशोर साहू एक सुपरिचित नाम है। बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार किशोर साहू ने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1915 में तब के मध्य भारत और आज के छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग शहर में जन्म हुआ था किशोर साहू का। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। किशोर साहू के पिता रायगढ़ रियासत के दीवान थे। कॉलेज के दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखा करते थे। अपने कहानी लेखन से ही वो सिने जगत के संपर्क में आए। तब के बंबई में उन्हें सिने जगत में पांव जमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। मुंबई में अशोक कुमार और देविका रानी के प्रयासों से किशोर साहू को बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन प्रभात में काम करने का मौका मिला। किशोर साहू ने कुछ अरसा मुंबई में और बिताया और फिर परिस्थितियों के चलते वापस नागपुर लौट गए। नागपुर में किशोर साहू के मित्र थे द्वारकादास डागा। उन्हीं के सहयोग से किशोर साहू ने बाद में मुंबई वापस लौटकर अपनी फिल्म निर्माण संस्था की नींव रखी। इस संस्था का नाम था द इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। अपने इस बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बहुरानी। अपने फिल्म बैनर तले किशोर साहू ने जो कुछ और मशहूर फिल्में निर्मित की उनके नाम हैं पूनम की रात, पुष्पांजलि, मयूर पंख और बेटी नैना साहू को लेकर बनाई गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां।

शिक्षक बनने से पहले लेखक थे। कहानी लेखन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी ये प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आती है। एक लेखक के रूप में उनकी चर्चित फिल्में हैं मयूर पंख, दिल अपना और प्रीत पराई, हरे कांच की चूड़ियां, औरत और तीन बहुरानियां। इस फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। दिल अपना और प्रीत पराई का लेखन करने के साथ साथ किशोर साहू ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

निर्देशक के रूप में किशोर साहू की अन्य मशहूर फिल्में हैं 1942 की कुंवारा बाप, राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, साजन, 1948 की नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, मयूर पंख, हैमलेट, किस्म का खेल, बड़े सरकार, गृहस्थी, घर बसा के देखो, हरे कांच की चूड़ियां, पुष्पांजलि, धुएं की लकीर और पूनम की रात।

निर्देशक महेश कौल और साहित्यकार अमृतलाल नागर किशोर साहू के अभिन्न मित्रों में से थे। नागर जी ने किशोर साहू के लिए 3 फिल्में लिखी थीं, राजा, वीर कुणाल और कुंवारा बाप। फिल्म वीर कुणाल की नायिका थीं अभिनेत्री तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ। सन 1942 में बनी फिल्म कुंवारा बाप और सन 1943 में बनी फिल्म राजा हास्य प्रधान फिल्में थीं। इनमें स्वयं अमृतलाल नागर जी ने भी अभिनय किया था। किशोर साहू एक समर्थ अभिनेता थे। यूं तो उनके अभिनय से सजी कई फिल्में हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली उनमें से ही एक है फिल्म गाइड में किशोर साहू द्वारा निभाई गई रोजी बनी वहीदा रहमान के पति मार्को की भूमिका। ये गीत है फिल्म काली घटा का।

22 अगस्त सन 1986 को इस दुनिया में अपने जीवन रूपी रंगमंच की आखिरी भूमिका निभाकर किशोर साहू इस दुनिया से विदा हो गए। हमारे पास अब उनके अभिनय से सजीव फिल्में हैं और उनके परिजनों इष्ट मित्रों के पास हैं उनकी स्मृतियां।

0: आज के ये फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में। श्रोताओं ने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10 बजे हैं, आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाते गुनगुनाते सदाबहार नगमों के सफर पर। गीतों के सफर का खूबसूरत आगाज किया है लता मंगेशकर के इस गीत के साथ, जिसको हमने लिया है फिल्म राम तेरी गंगा मेली से। गीत में गीत संगीत है राजेंद्र रविंदर जैन का।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म राम तेरी गंगा मेली से। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म महबूबा से, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत में बोल हैं आनंद बख्शी के और मौसिकी आर डी बर्मन की।

आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कश्मीर की कली से, आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीत में बोल हैं SH बिहारी की और धुन है ओपी नैयर की।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म धनवान से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। गीत में बोल थे साहिर के और धुन थी हृदयनाथ मंगेशकर की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हमराज से। आवाज है महेंद्र कपूर की, गीत में बोल साहिर लुधियानवी के और धुन है रवि की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म हमराज से महेंद्र कपूर की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म गाइड से। गीत में बोल शैलेंद्र के और धुन एसडी बर्मन की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म होटल से आशा भोसले और मनहर की आवाज में। गीत में बोल थे इंदिवर के और धुन उषा खन्ना की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में, अगला गीत फिल्म कलाकार से।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आइए अगला किताब को सुनवाते हैं फिल्म कसम वादे से, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत में बोल हैं गुलशन बावरा की और धुन आर डी बर्मन की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म कसमे वादे से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं एसएच बिहारी का लिखा हुआ फिल्म किस्मत से। गीत में बोल है महेंद्र कपूर के, धुन ओपी नैयर की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म किस्मत से महेंद्र कपूर की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म नीलकमल से, आवाज मोहम्मद रफी की। गीत में बोल हैं साहिर लुधियानवी की और धुन है रवि की।

फिल्म नीलकमल से मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म पराया धन से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत में बोल आनंद बख्शी के, धुन आर डी बर्मन की,

आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत आप सुन रहे थे फिल्म पराया धन से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है, आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहाँ से कुछ ही देर में आप

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन

0: बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थंकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो एआई से तैयार किया गया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। अगली सभा हमारी कल प्रातः 5:51 पर आरंभ होगी। तब तक आगे दीजिए रेडियो होस्ट शोभना परवीन को शुभ रात्रि, शुभ खैर, जय हिंद।